हिमालय चिंगदोलदगी ठेक न खोयना चेली गंगाना येली शांति के पाउजेल इचेल सिना ताकली अखोय अमतने नाउयोक नाउकोन फबी अकनब पोकपी वात पादबी अमदी अखांकन बिने इमा नहाकती खुरुमजरी नहाकपो हे इमा जन्मभूमि।

0: ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯜꯂꯒ ꯏꯕ ꯍꯧꯕꯤꯔꯦꯕ
1: 59 ꯍꯜꯂꯦꯗꯅ ꯍꯣꯏ ꯃꯔꯤꯗꯤ ꯍꯤꯟꯗꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯥꯒꯔꯤꯛ ꯕꯤꯄ꯭ꯔꯆꯥꯔ ꯁꯚꯥ ꯂꯤꯡꯈꯠꯇꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯅꯤꯛ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯦꯄꯥꯝ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯂꯩꯔꯦ
0: ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯈꯝꯕ ꯊꯣꯏꯕꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯕꯤꯕꯅꯦꯕ
1: ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯅꯦꯜ ꯏꯕꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯆꯥꯛꯇꯣ ꯃꯥꯅ ꯆꯤꯠꯇ ꯂꯦꯈꯥ ꯍꯜꯂꯦ ꯏꯃꯤꯅ
0: ꯍꯣꯏ
1: ꯃꯆꯥꯛꯀꯤ ꯂꯣꯏ ꯐꯪꯉꯦꯕ
0: ꯍꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ
1: ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯒꯣꯗꯥꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯤꯝꯗꯣ ꯃꯆꯥꯛꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯆꯨꯖꯥ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯥꯁꯤꯔꯕꯥꯗ ꯑꯃ ꯄꯤꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯈꯔ ꯇꯧꯕꯗꯨꯒꯤ ꯁꯦꯝꯗꯜꯂꯒ
0: ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅꯅꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯤꯟꯗꯤꯗꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟꯗ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯕꯁꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯃꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ
1: ꯆꯤꯇ꯭ꯔꯂꯦꯈꯥ ꯂꯩꯔꯦ ꯐꯥꯁ
0: ꯍꯣꯏ
1: ꯒꯣꯗꯥꯟ ꯂꯩꯔꯦ
0: ꯍꯣꯏ
1: ꯒꯕꯜ ꯂꯩꯔꯦ
0: ꯍꯣꯏ
1: ꯁꯦꯕꯥ ꯁꯗꯟ ꯂꯩꯔꯦ
0: ꯍꯣꯏ
1: ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯆꯟꯒꯤ ꯑꯈꯟꯅꯕ
0: ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯎꯄꯅ꯭ꯌꯥꯁ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯀꯣꯖꯥ
1: ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯁꯤꯕꯦꯃ ꯃꯇꯝꯗ ꯋꯥꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯆꯥꯎꯀ꯭ꯔꯤ ꯂꯩꯄꯣꯟꯇꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯄꯣꯟꯇꯦꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯉꯛꯄ ꯑꯃꯅ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯗ ꯊꯥ ꯊꯥꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯃꯨꯠꯇꯣ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯁꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯂꯦꯠ ꯇꯧꯋꯦ
0: ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯅꯥ ꯃꯊꯨꯝ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯃ ꯐꯪꯕꯁꯦ
1: ꯃꯅꯥ ꯃꯊꯨꯝꯁꯤ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯥꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯚꯕꯟꯗꯒꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯐꯪꯉꯤ
0: ꯁꯤꯛꯁꯥ ꯑꯃ ꯁꯃꯥꯖ ꯀꯂ꯭ꯌꯥꯣ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯥꯂꯌ
1: ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗꯒꯤ ꯃꯥꯙꯕꯤꯗ ꯑꯩ ꯐꯪꯈꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯐꯪꯉꯛꯏ
0: ꯃꯥꯙꯕꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯂꯣꯟꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯤꯟꯗꯤꯗ ꯄꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯍꯤꯟꯗꯤꯗ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯅꯥꯁꯤ ꯐꯪꯕꯤꯕꯅꯦ
1: ꯐꯪꯈꯤꯕꯅꯤ
0: ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯂꯣꯟꯗꯒꯤ ꯍꯤꯟꯗꯤꯗ ꯍꯟꯕꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯍꯤꯟꯗꯤꯗꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯂꯣꯟꯗ ꯍꯟꯖꯜꯂꯛꯄꯗ ꯐꯪꯕꯤꯈꯤꯕ ꯃꯅꯥꯁꯤꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯅꯣ ꯑꯣꯖꯥ
1: ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯆꯟꯒꯤ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯣꯔꯠ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤꯁꯤꯗ 1979ꯗ
0: ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯒꯤ ꯐꯪꯕꯤꯕꯅꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯆꯟꯒꯤ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯅ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯤꯟꯗꯤꯗꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟꯗ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯤꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯏꯗꯒꯥ ꯀꯞꯇꯥꯟ ꯁꯥꯍ ꯐꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟꯗ ꯊꯨꯝꯕꯤꯕ ꯃꯥꯅꯤ ꯙꯔꯃꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯂꯥꯜ ꯃꯟꯇ꯭ꯔ ꯂꯥꯏꯁꯣꯟ ꯁꯜꯂꯕ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯩꯠꯇ ꯗꯣꯕꯦꯂꯣꯡꯒꯤ ꯀꯥꯏꯅ
1: ꯇꯝꯕꯤꯕꯗꯣ
0: ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥꯒꯠꯄꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯣꯏꯅ ꯆꯣꯏꯅ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯖꯥ
1: ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯈꯔ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯣ ꯑꯩꯅ
0: ꯈꯜꯂꯒ ꯑꯃꯈꯛꯇꯗꯒꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯃꯄꯨꯝ ꯂꯧꯈꯠꯄꯗꯤ
1: ꯅꯠꯇꯦ
0: ꯈꯔ ꯈꯔꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯒ ꯁꯤꯅ ꯃꯄꯨꯝ ꯁꯥꯕꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅꯀꯣ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤꯒꯩꯅ ꯐꯖꯒꯗꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤꯅ ꯈꯟꯒꯠꯄꯤꯔꯨꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯂꯩꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ
1: ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗꯨꯒꯤ ꯀꯔꯦꯛꯇꯔ ꯃꯥꯏ ꯆꯔꯤꯇ꯭ꯔ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ
0: ꯍꯣꯏ
1: ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯈꯠꯆꯈꯤꯕꯅꯤ
0: ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯄꯟꯖꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯆꯥꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯣꯖꯥꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯟꯁꯄꯥꯌꯔ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯊꯣꯏꯅꯁꯤꯡ ꯄꯤꯕꯤꯈꯤꯕ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ ꯊꯨꯛ ꯂꯥꯎꯅ ꯍꯦꯛ ꯐꯥꯎꯕꯤꯈꯤꯕ ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯝꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯆꯥꯅꯦꯅ ꯈꯟꯕ
1: ꯐꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯈ꯭ꯔꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯟꯇ꯭ꯔ ꯅꯁꯜꯂꯕꯅꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯅꯤꯄꯥꯟ ꯑꯃ ꯍꯜꯂꯦꯗꯅꯀꯣ ꯐꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯆꯧꯕꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯊꯛ ꯊꯣꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯕꯨ ꯁꯤꯠꯇ ꯊꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ
0: ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ
1: ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯗꯨꯅ
0: ꯑꯗꯨ ꯋꯥꯈꯟ ꯑꯃꯃꯝ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯊꯣꯏꯁꯤꯟ ꯑꯃꯃꯝ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗꯅꯦꯕ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯔꯤꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥꯗ ꯏꯟꯁꯄꯥꯌꯔ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯤꯟꯗꯤꯗ ꯂꯣꯏ ꯄꯥꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯣꯖꯥꯗ ꯐꯥꯎꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯤꯅꯦ ꯑꯥꯔꯠꯇ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯔꯥꯏꯕ ꯊꯕꯛꯇꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯏꯕ
1: ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯥꯔꯠꯇ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯣꯜꯅꯤꯒꯤ ꯀꯃꯥꯟ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯀꯃꯥꯡ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯝ ꯂꯝꯗꯨꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯔ ꯌꯧꯔꯤꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯈꯪꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕ
0: ꯃꯥꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯀꯜꯆꯔꯁꯤꯗꯤ
1: ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯥꯏꯕ ꯄꯣꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯃ
0: ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯣꯖꯥꯗ ꯋꯥꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯇꯥꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯣꯖꯥ
1: ꯋꯥꯕꯩ ꯋꯥꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤ ꯍꯟꯕꯗꯗꯤ ꯑꯩ ꯃꯥꯅ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯑꯩꯅ ꯀꯩ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯣꯡꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯣꯛꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯁꯗꯟꯗ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯗ ꯈꯜꯂꯦ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯟꯗꯨꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯗꯤ ꯁꯠꯇꯨ ꯍꯣꯏ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯂꯥꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯆꯥꯏꯌꯦꯕ
0: ꯁꯠꯇꯨ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯔꯤꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ
1: ꯃꯁꯤ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗꯥꯟ ꯁꯦꯝꯃꯛꯇꯅꯤꯀ ꯑꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯄꯠꯇꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯦ ꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯇꯩꯅ ꯋꯥꯔꯝꯕꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯋꯥꯔꯝꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯏ ꯁꯪꯖꯪꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯧ ꯑꯃ ꯑꯁꯤ ꯅꯥꯡꯕ ꯑꯃ ꯆꯥꯏꯌꯦꯕ
0: ꯍꯧ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ
1: ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯗꯨ ꯁꯠꯇꯨꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯟꯈꯤꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯨꯟꯖꯨꯃꯣꯍꯟꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯅꯨꯕꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯏꯁꯥꯅꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯔ ꯊꯦꯝꯕꯗꯒꯤ ꯀꯩꯗꯧꯅ ꯑꯥꯗ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄꯁꯤ ꯀꯩ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯦ हाय हाय अदुबु आइना नक्वा मना आइना 2012 13 र कैनो आइ को जगन्नाथ पुरी चल हुई है कटक द सेंडे हे डायरेक्टर की मखादा आज त्र आइ के हम चल हुई है अदुदा खै की मफम मदुगी अफोबा त्रजिन चामा हलबनु पा हना अर मा की एक्सपीरियंस तो माना यो दहाय रे हाय मुसम पन्नर पनि बंगाल दी मरोइना सादुम चाय छा चायदना हामिंग करिकिन चाहिदना मधुकी लाइक तो मान हालत मतम दा सदुम दो हंद दे माना
0: कमाई हाल
1: सदुम दो मोटा प्रेजेंटेशन पीपी वानी कोई मिठाई होना माना हल्ल है साउथ इंडिया रा हुजी की लाइक तो पार मतम लाइक तो फट लंगो करने याद दे देना
0: नातु का चाना दरा
1: चाना दा मिना अशे चिंगबा लाइबदिगी ओरो दा इन हन गिसु काई दिबे छैना
0: मतम दो
1: आ आई फिल तो की आइना माबो वजा तो बोइना कैटो गुणते
0: हर
1: मागी इलिशा माउ जोइन हलिम हिंगी दा इलिशा माउ हल्ली अदिगी ई दिन मनिगी कोई पिस्टोल कुंडाले ई हल्ली

0: ஜந்திர சங்கிக்கு குதுல்த அதிகாரிமையும் பொரேந்திர சர்மன கோம்ப வயலின் தவிரே அதோம்ன தௌரம் தவிரிப செகாஸ்வானி இம்ஃபால்தகினி ஹவுசிகயுக்கு பூங் நிப்பான் தாரே நகாக்கி மட்டும்த டெல்லிதகி ரிலேத ஹிந்தி அமதி இங்கிராஜித பாவ் அமதி சிலோங்தகி ரிலேத அவாங் நோம்போக்கி பாவ் ஃபங்கிரகனி
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। हमारी संवाददाता की ये रिपोर्ट।
5: राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। वह इससे पहले 2015 में विदेश मंत्री और 2019, 2023, 2024 तथा 2025 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का दौरा कर चुकी हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भारत के ऊर्जा, औषधि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी कई प्रतिष्ठानों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना तथा सहयोग की नई संभावनाओं की तलाश करना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित सौहार्दपूर्ण संबंध है। मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत होंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से इशिका शाह।
4: ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम शंकर के साथ भी बैठक करेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
6: बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। अनुमेदिता और ऋषो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: इस सम्मेलन के दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त और ओडीओपी यानी एक जिला एक उत्पाद की एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में 6 कारीगर, वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 अनूठे उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। ये उत्पाद काशी की सदियों पुरानी कला, शिल्प कौशल और सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा, बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को भी वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
4: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
8: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। इसके अलावा 2017 में जीएसटी लागू किया गया, जिससे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई, जिससे कारोबार करना आसान हो गया। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
9: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
8: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीद

0: इंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसका मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं में योग को शामिल करना है।
2: इस 5 दिवसीय वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका सहित 60 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी 12 विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। इस चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ी कलात्मक और लयबद्ध योग डिवीजनों के साथ साथ 7 आधिकारिक योग श्रेणियों में हिस्सा लेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। ये घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में कल रात हुई। घटना की जाँच जारी है। इधर नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में लिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमेरिका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। रूबियो ने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि क्वाड देश अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग सहित कई ठोस परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
3: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
1: भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। गोवा के मडगांव में कल भारतीय महिला फुटबॉल टीम 6 साल बाद सैफ महिला चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से सामना होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी की आशंका है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
4: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज मालवीय नगर के होटल में लगी भीषण आग की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, दिल्ली में भयावह अग्निकांड। दैनिक जागरण के शब्द हैं, अवैध होटल में 21 की मौत, 11 विदेशियों सहित 21 जिंदा जले। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, घटना के बाद अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यापक अभियान चलाने पर सख्ती। शीर्षक से हिन्दुस्तान ने लिखा है, नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठान सील होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए अनुग्रह राशि देने की खबर भी अधिकतम समाचार पत्रों में है। अमर उजाला ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के दो गुटों में बंटने की खबर को शीर्षक दिया है। तृणमूल में टूट, 58 बागी विधायकों ने ऋत व्रत को

0: चुना नेता मिली मान्यता। इसी खबर पर राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, टूट गई टीएमसी, 58 विधायकों ने स्पीकर को सौंपा समर्थन पत्र। अमेरिका द्वारा भारत सहित 50 से अधिक देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर नवभारत टाइम्स ने बॉक्स में लिखा है, अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत के बीच 12.5% की एक्स्ट्रा ड्यूटी का पेच, अमर उजाला ने छापा है। ट्रंप प्रशासन का आरोप, इन देशों ने बंधुआ मजदूरी रोकने के लिए नहीं उठाए कदम, इसलिए लगाया जा रहा है शुल्क। भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि पर अमर उजाला ने संपादकीय लेख में संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के हवाले से चिंता व्यक्त करते हुए टिप्पणी की है, जून से अगस्त 2026 के बीच अल नीनो सक्रिय होने की 80% और नवंबर तक बने रहने की आशंका है। मेघालय के चेरापूंजी में सेवन सिस्टर्स और किनरेम वाटरफॉल में लगातार हो रही बारिश की मनमोहक तस्वीर दैनिक भास्कर में है। पौष्टिक आहार के फायदों की याद दिलाते हुए लोक सत्य ने टिप्पणी की है, याददाश्त बढ़ाने में सहायक पौष्टिक आहार।
1: धन्यवाद सरफिरोजी। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज शिलोंग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार पत्र प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला डेल्सी रोड्रिगेज इन न्यू दिल्ली टुडे। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह टू चेयर 73rd प्लीनरी सेशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इन शिलोंग। U.S. Secretary of State Marco Rubio says United States and India are only weeks away from concluding a long-awaited trade agreement. IMD issues orange alert for heavy rain in Keralam and Mahi today. First World Yogasan Sports Championship to begin today in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi to join the event virtually in the evening. And in football, India advanced to the final of SAF Women's Championship, beating Bhutan 1-0 in Goa. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with the acting president of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi today. Ms. Rodriguez arrived yesterday on a 5-day visit to India. She is accompanied by a delegation comprising the ministers of Foreign Affairs, Economy and Finance, Science and Technology, Communication and Information and Transportation. Ms. Rodriguez had visited India in her earlier capacity as Foreign Minister in 2015 and as Vice President in 2019, 2023, 2024 and 2025. More from our correspondent.
3: The discussions will involve the full spectrum of India-Venezuela relations and explore avenues for further cooperation in areas of energy security, trade and investment, pharmaceuticals, healthcare, transportation and renewable energy. The Venezuelan delegation will also visit several sites connected with energy, pharmaceuticals and auto sectors to gain insights into India's technological and industrial capabilities and to explore opportunities for collaboration. India has been an important partner of Venezuela in the areas of energy and investment. Indian PSUs have made significant investment in Venezuela in the energy sector and they are keen to explore opportunities for further enhancing their presence. According to the Ministry of External Affairs, India and Venezuela enjoy warm and friendly relations underpinned by cooperation in the energy sector, trade and shared commitment to the Global South. It said that the visit is expected to further strengthen bilateral ties and deepen engagement between the two countries across diverse sectors. With Anupam Mishra, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
2: Union Home Minister Amit Shah will chair the 73rd plenary session of Northeastern Council, NEC, in Shillong, Meghalaya today. The Ministry of

0: ne macha pakhang oiba ai hakpu kari sintha pangjogi
1: pakham mahapu uba magtada nurai gi samu hakjang se khongdagi na ton phau ba tu jungli ba sina kari gi ai gi khomlen manglan sa da u khi ba tam ba du se natra ne na ne da
0: tapi gada ba sintha di tapi da a नुरा मिटफम होंगदना असुम तुमिन लैबीबबु करी मतौ कौबगी
1: नसल लोइबी आइ हाकी हंगे लिसाउ टिक
0: करी हाय
1: लेम लैङा सु फांगम दे हंगे नमुक्ता सम्बियु गबा
0: हंगे लिचाउ टेखरे हायबा कदाय कदाय ए इस सिदि करम तौनि ओ हिनुम द तारिबा हंगे मते असिना हेक्त पोसिल aduga lang thori sina unchil lage siwar di arane se se lobi ro lemda yamna phabiyo adudi pakhang amu khongdoi jakhragi
1: ngai bi kho
0: kar
1: nurawe bi ha ki matik sabak khonga di leijade
0: kari khonga
1: se नुजावै बिना पामुना थमजब परै से खोङावैना लौबि
0: परै
1: ngasi koro nongdagi ibudau thangjing mahakna nura pakhangani bu singlau sakhangna hanbi adum nadi oiraga pakhangi koloi minglen bu nurawai bi engonda iyawa phigei amukta singbi ugaba
0: tabi ulairang sakhendi palem panthau leijedri सजिक मतुंग इन खरी पंथौगी मिंगलेंदी खुनथौरेम अपोक पिपलेम गी कोलोइना लिकलाइनु
1: लिकलाइनु
0: पाखंग लैबक थीबदी लायर लमजा हाउब कोलोइ मिंगौजे
1: हाउब
0: आ पाखंग यावा फिगै सेंग लबनिना नुरा सि यावा फिगै सेंग बिरो पंथौ कना गी ममोमनु पलेम कना गी लैरांगनु नुरा गी कोलोइना करी कवीबगी
1: केगे मोइरांग निंग थौगी यासानबा पंथौ हुइनिंग सुमबगी अमत पोकपी ममोम लोय
0: पंथौ हुइनिंग
1: पले मिमा पोकपी तोनु वायेन चुमबिगी आयु किन कोरो ओय नुमिदांगी न थाज ओइरिबी नुरा याइ थिंग कोनु हाइन कोलोय जई
0: ओय सिदि अंथौ न निं थिज खरेदा अददि करिगुंब कोरौदा नुरा पाखंग उनखिसि ngasigidi pakhang amuk khongdoi jakhragi
1: nana oi bi ei khoisu lamle loktak pat asida ngai ha lem lei ngami tamja hokhi
0: lai bi horoko ine macha
1: lai ja horagi pamu ba

0: ईसानो कोनो नसावे ये आवाज तार बदी मपलंग थोरक लो चोई ने तार उड़ब निकलांग परेगा नहीं दो नसावे ये ने पूरक लेने लव चरो लाव नहीं सानो
1: ईसाबे कदाई कदाई लिखलांग हाय बदी
0: ये वो लिखलांग परेगा नहीं से कदा कदा नो
1: इमो बले बले इमागी पारी यवामी कपलनु पारी कुमलांग लम लम लनी से इमागी पारी मान कुमलांग इल लगे इमागी पारी इमागी मो
2: बले
0: शानो चोई जाई नन तारु रवलिक लांग परेंगनी असे चिंगू बथंग जिंग न कुबी दुना नाव कौन जब फंग जरगनी दो इशानो
1: इशामी
0: ए चिंगू थंग जिंग कोई लाई ताई बंग न चान नाई मु परी मो मनी गल्लो इनना ताई बंग पुंसी न खंद्री बमखई चिंगू के थावगल पांग

ताइबंग मिओय बाय खैना हंगा हाइबो खोंजेल गलुइनाना ताइबंग मंगफाउ नरकपमि कुप्तागि हौना नुंसिबना यम सिन्दुना लाख्राबनी ममा ओइबिकनाना मपा ओइबकनाना ताइबंग सखंगना बतंगाइरिबा मचा कनाबु नुंसिदबा याउबगे थमोय यमदि नुंसिबगि लैकोलददि लाइरबगि लैइनासु इना खुनबगि लैइनासु संबल खागतबा ngamgadobunate नुंसिबदि निंगतंबनी अहांगबनी नुंसिबदि मचु लैतबनी महाउ लैतबनी मपा नाइतबनी नुंसिबदि अथोइबनी।

आकाश पानी इम्फाल हौजिंग नुमित उम पुंग तरानी थी तारी कंगला चैनल के अनिशुभ थवरम पड़ेंग संदोक पहुंचेरी संदोक चरीब मीडियम वेब मीटर चौहम निफु दशमिक अमा किलोहर्स सनीपान मरफनी थोई हौजिंग मणिपुरी दुमित उम की पाव तावीरसी।

आकाशवाणी इम्फाल मरांगठी बैबीन पाव पाजरी अहमद मरुब पाव नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की हूद्राउंड सूब प्लीनरी सेशन केंद्र की गृहमंत्री अमित शाह सभापति शिलोंग पांथोली थौबाल मुइजिंग खोंकोक लेंगोइजिंग द्रग फाब चलब थौबाल कमांडो की हबिलदार हाटब चेनब मियोय अयुक फारे नुमिनी चथगदब ब्रिक्स कल्चर वाकिंग ग्रुप की अनीसुब मिफोंग वाराणसी होरगनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यू दिल्ली वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज़ उन्नगनी।

0: ꯕꯔꯥꯒꯤ ꯈꯣꯡꯕꯥꯟꯗ ꯂꯩꯍꯧꯕ ꯋꯥ ꯃꯄꯨꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯃꯤꯠꯇ ꯎꯔꯛꯏ꯫ ꯅꯣꯡꯗꯤ ꯇꯥꯔꯛꯈꯤꯗꯔꯦ, ꯊꯃꯣꯏꯕꯨ ꯏꯪꯍꯟꯕ, ꯆꯤꯡꯃꯥꯏꯕꯨ ꯁꯪꯍꯟꯕ, ꯍꯧꯖꯤꯛꯄꯨ ꯀꯔꯤꯕꯨ ꯀꯥꯟꯅꯔꯤꯕꯒꯤ ꯅꯣꯡꯅ ꯇꯥꯔꯛꯂꯕꯁꯨ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯆꯤꯊꯣꯛꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯆꯤꯡꯃꯥꯏꯕꯨ ꯁꯪꯍꯟꯕ, ꯊꯃꯣꯏꯕꯨ ꯅꯧꯈꯠꯍꯟꯕ, ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯥ ꯑꯃ ꯄꯤꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯅꯣꯡ ꯇꯥꯔꯛꯈꯤꯗꯔꯦ ꯆꯨꯝꯅꯤ ꯀꯤꯝꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕ ꯑꯏꯕ ꯀꯩꯁꯥꯝꯄ꯭ꯔꯤ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯕ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ꯫ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ, ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜꯒꯤ ꯄꯨꯡ 2 ꯃꯤꯅꯤꯠ 13 ꯆꯠꯂꯤ꯫ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯗ ꯗꯣꯄꯍꯔ ꯁꯃꯥꯆꯥꯔ ꯇꯥꯕ ꯐꯪꯕꯤꯔꯒꯅꯤ꯫
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता, ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू और पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप अहमदाबाद में शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ व्यापक चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, ऑटोमोबाइल आदि क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे। मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने तथा वैश्विक दक्षिण के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा।

0: का उद्देश्य भारत की दक्षिणी की और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना तथा सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। वे दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। दो दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद NEC का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलंग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे के विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। बैठक में क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए गठित मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय कार्यबलों द्वारा की गई प्रगति पर चर्चा प्रमुखता से शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा कि इन विचार विमर्शों से राज्यों और हितधारकों के बीच समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे साझा विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री श्रीकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अलावा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक को महत्वपूर्ण बताया।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
0: उत्तर पूर्वी परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सर्वोच्च क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में कार्य करती है। ये क्षेत्र में समन्वित विकास को बढ़ावा देने और सहकारी संघवाद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा है कि वैश्विक व्यवधानों और आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत वैश्विक बाजार में अन्य देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। श्री प्रसाद ने नई दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस GBRC के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने हाल ही में कई देशों के साथ सम्पन्न हुए मुक्त व्यापार समझौतों की सराहना भी की। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा आयोजित GBRC का उद्देश्य वैश्विक व्यापार से जुड़े विषयों और चुनौतियों पर शोध के लिए चर्चा का अवसर प्रदान करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की है। इसके तहत पिछले 24 वर्षों में गुजरात में अवैध रूप से रह रहे 424 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 782 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। ये अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ शुरू किया गया था। गांधीनगर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले प्रत्येक घुसपैठिए का पता लगाया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों को आश्रय, रोजगार या सहायता प्रदान करके कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
2: 6,200 से ज्यादा लोगों की तहकीकात की जा रही है। इनमें से 362 लोग अभी तक बांग्लादेशी पाए गए हैं। साथ ही जिन लोगों ने उनको रहने के लिए घर दिया होगा और जिन्होंने उनको नौकरी दी है लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे होंगे, उन पे भी एक कड़े कदम उठाने के लिए एक पूरी टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। गुजरात पुलिस घर घर और गांव गांव तक ये तहकीकात चालू रखेगी।
0: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। ये घटना कल रात ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में हुई। गंभीर मरीजों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की जांच जारी है।
3: ICU 14 फ्लोर पर है, उसी में आग लगने की बात है शॉर्ट सर्किट से। कुल 13 से 15 लोग भर्ती थे, लेकिन 3 लोगों की मृत्यु कंफर्म है। बाकी लोग अन्य जगह भेजा गया अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए। तो मृत्यु का आंकड़ा बढ़ सकता है हालांकि, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, हम लोग जांच कर रहे हैं।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मालवीय नगर अग्निकांड के घायलों से मिलने आज साकेत के निजी अस्पताल पहुंची। मुख्यमंत्री ने घायलों तथा उनके परिजनों से बातचीत की और अधिकारियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। श्रीमती गुप्ता ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 10-10 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घायलों के चिकित्सा खर्च की व्यवस्था की जाएगी। मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मृत्यु हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। वयोवृद्ध निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। 10 जनवरी 1950 को जन्मे निहलानी ने 1982 में आई फिल्म हथकड़ी से निर्माता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें 1986 में आई फिल्म इल्जाम से अभिनेता गोविंदा को पहला बड़ा ब्रेक देने का श्रेय दिया जाता है। जनवरी 2015 में निहलानी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सख्त नए दिशा निर्देश लागू किए, जिनके तहत ए रेटिंग वाली फिल्मों में भी कुछ अपशब्दों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या हिंसा दर्शाने वाली सामग्री को सीमित करने का प्रयास किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। आलोचकों का कहना है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को अमरीकी संसद की मंजूरी मौसम विभाग ने आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन की पुष्टि की है। मॉनसून 3 दिन देर से आया है। 1 जून से केरलम में मॉनसून के आने की संभावना थी। विभाग ने 9 जून तक केरलम और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में तेज बारिश हो रही है।
4: केरलम के 6 जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। केरलम में कई जगहों पर रात से अब तक लगभग 5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। केरलम से स्मिथ एम पलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी इसी तरह की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर आंधी की प्रबल संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ, जो वैश्विक खेलों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं देंगे। पूरे विश्व से योग प्रेमी और एथलीट प्रतियोगिता के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं को योग में शामिल करना है।
5: वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर संतुलित, स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और लाओस के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं और ये बौद्ध धर्म तथा रामायण की साझा विरासत में दिखाई देते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंग सावन फोम विहाने से भेंट की। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 149 अंक गिरकर 74,197 पर, जबकि निफ्टी 34 अंक फिसलकर 30,372 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू और अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार फौजी भाइयों, ये है आकाशवाणी फाल केंद्र का कंगला चैनल मीडियम वेव 340.1 मीटर अर्थात 882 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है फौजी भाइयों के लिए प्रसारित हमारा दैनिक कार्यक्रम।

फौजी भाई, आज गुरुवार है और हम लेकर आए हैं फिल्म संगीत। तो कार्यक्रम के पहले पायदान पर सुनते हैं गीतकार संगीतकार रविंद्र जैन के संगीत निर्देशन में बनी फिल्म हीना से ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

फौज भाई, अब सुनते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में बनी फिल्म राम लखन से ये गीत। इस गीत में आवाज़ें दी हैं मनहर उदास और अनुराधा पौरवाल ने। गीतकार है आनंद बख्शी।

फज भाई आप सुन रहे हैं आकाशवाणी फाल के कंगला चैनल से फिल्म संगीत कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब सुनते हैं विपिन सचदेवा की आवाज़ में सनम बेवफा फिल्म से ये गीत। गीतकार है सावन कुमार और संगीतकार है महेश किशोर।

फौजी भाई, अब सुनते हैं अगला गीत। समीर के लिखे इस गीत के बोल को मधुर आवाज़ में सजाया है अनुराधा पौरवाल ने फिल्म दिल है कि मानता नहीं। संगीतकार है नदीम श्रवण।

फौज भाई अब सुनते हैं लता मंगेशकर और प्रीति कुमार के युगल स्वर में राधा का संगम फिल्म से ये गीत। बोल हसरत जयपुरी के हैं और संगीत अनु मलिक का।

फौज भाई, इसी गीत के साथ आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। कल फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

आकाशवाणी इम्फाल असई तुंगाई बुजा पदाई बंजाई तिजिंगा मिखाऊ तमपलोपुबे कबई रोक मैतलम तमपब मई मीडियम वेव मीटर फैचुमे पोन अकाचुरु कैलोहर्स फैसल सनकनाई थाउरम मिखौनाबे असई जानक टोंगचम आकाशवाणी इम्फाल लालोदिखो असई जानक टोंगचम सम तमपब मई गंगदन का पान मई प्राइम मिनिस्टर पो नरेंद्र मोदी रुई वेनेजुएला एक्टिंग प्रेसिडेंट लु डेलसी रोड्रिगेस ले असै न्यू दिल्ली खौ परि रासम लोपनि थे लु रोड्रिगेस जांपु सेंटाखंग सुन इंडिया खौ दोला नंगु तंगकन तंगे रोड्रिगेस थाय फॉरेन अफेयर्स इकोनॉमी फाइनेंस साइंस टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन खनि ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर नि गंगजाव लोकने लु रोड्रिगेस श्री इंडिया खौ कुम चिन्हैन रुपुङ खौ फॉरेन मिनिस्टर सुन खनि कुम चिन्हैन रुस्कु चिन्हैन सिखथुम खनि चिन्हैन सिपुङ खौ वाइस प्रेसिडेंट सुन गंलोकने इंडिया ले वेनेजुएला रि एनर्जी सिक्योरिटी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फार्मास्यूटिकल हेल्थ केयर ट्रांसपोर्टेशन खनि रिन्यूएबल एनर्जी लमगै खौ परि राचमलोपनि मणिपुर होम मिनिस्टर कंथौजम रोबिन गोविंदास रुई मणिपुर टोंग डीजीपी कथन तान तिपुंगलोकन मई मुकेश सिंह तोला नोंग डीजीपी ऑफिस मंत्री पुख्री इम्फाल खाउ अरियुलना अताव स्टेट टोंग तसबलोन कफेन चमलोकथे मिनिस्टर रुई डीजीपी कथन ततई मुकुलोकने डीजीपी मुकेश सिंह रुई बानसिन चमेले कजाउना सिक्योरिटी चैलेंज गोई तई तिलोय लोमै कहाव मिलते कमेर सकने मणिपुर टंग फिल्म बुंग सैलोना न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल नलौका मई मूंग खाओ जपाव का मई खंग फिल्म मेकर लक्ष्मी प्रिया देवी दुला नोंग मणिपुर गवर्नर पौ अजय कुमार भलारुई मुकु लौकथे मई फिल्म है न्यूयॉर्क खाओ लखपत का मई मूंग खाओ अवार्ड्स कथुम लाकने मी है इंडियन प्रोडक्शन रि चिल्ड्रेन अलाउन खनी फैमिली फिल्म कैटेगरी खाओ ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड लामे रईमे मणिपुर पुलिस लपो थैला दौला नों तिंग सन्नै पिनों जिंबांग खोंग दसा मिनी चुई दवाई कई बेगन खाओ ड्रग फुंपत फुंगुत मई बमथे तुम लपो लतो मिथाई लाना थौबाल कमांडो टीम रुई मसई गई हिमदिंग लोकने खौते महम्मद नौबी खनि महिल तुनि थाना मई कटिंग कम से पु मई रुई फोर्ट आई आर बी हबिलदर के आई सुरेश सिंह त सुरी रुई गिटलना गंधाई ते पौदो कंथे कबी मई पुलिस पर्सनल ते थौबाल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खौ फुलौकने तिकी कमाई ते थैथे तुना जिम्बांग खोंसकु मेनिन रुपु खौते सापकने कतांग खौ सर्च ऑपरेशन

0: ये आकाशवाणी है भारत में व्यवस्थित रेडियो प्रसारण 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो के नाम से शुरू हुआ था। इस प्रसारण को शुरू हुए 90 वर्ष हो गए हैं। इस उपलक्ष में प्रस्तुत है वृत्त रूपक प्रसारण की प्रतिध्वनियां। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। लेखक और प्रस्तुतकर्ता पार्थ सारथी थपलियाल और अशोक अग्रोही। संपादन एवं प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह। परिकल्पना एवं निर्देशन मनीषा जैन और प्रमोद कुमार।
1: हो स्वतंत्र भारत उपवन में लोकतंत्र बासंती आया, बनने लगी नीति शासन की, जन जन में उल्लास समाया।
2: जन जन के भावों में उपजी आशाओं की अमर कहानी, ऑल इंडिया रेडियो को फिर नाम दिया आकाशवाणी।

0: 1947 में देश के विभाजन से पूर्व भारत में रेडियो स्टेशनों की कुल संख्या 9 थी। विभाजन के समय ढाका, लाहौर और पेशावर स्टेशन पाकिस्तान में चले गए। जो 6 रेडियो स्टेशन भारत में रह गए उनके नाम थे दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, लखनऊ और तिरुचिरापल्ली।
1: स्वाधीनता प्राप्ति के बाद देश नव निर्माण और भविष्य की योजनाओं को बनाने में लग गया। भारत की स्वाधीनता प्राप्ति से पहले 1946 में एक अंतरिम सरकार बनाई गई थी, उसमें सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 4 नवंबर 1948 को नागपुर में रेडियो स्टेशन का शुभारंभ करते समय तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था,
2: ब्रॉडकास्टिंग का हमारा प्रोग्राम बहुत बड़ा भारी है और उसके लिए जो योजना हमने बनाई है वो कुछ समय लेगी। उसके लिए इंतजाम करने में हमें बाहर मुल्क से जो सामान सरंजाम मंगवाना है उसमें वक्त लगेगा, लेकिन सब प्रांतों की ख्वाहिश ये थी कि ये काम जल्दी किया जाए तो उनको बहुत सुविधा होगी। इसलिए एक हमने काम चलाओ योजना बनाई है और ये योजना के अंदर हमने जो प्रोग्राम रखा था उसमें नागपुर में स्टेशन खोलने का इंतजाम किया।
1: सरदार पटेल ने कहा था कि आज रेडियो लोगों की जीवन की आवश्यकता हो गया है, इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार होना चाहिए।
2: रेडियो आजकल की जिंदगी में कौम के लिए एक आवश्यक वस्तु हो गई है। उससे बहुत फायदा पहुंचता है लोगों को और भारत की एकता में भी उसका काफी हिस्सा हो जाता है। इसलिए हम मध्य प्रांत के लोगों को हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से आग्रहपूर्वक विनंती करते हैं कि हर जगह पर जहां तक हो सके रेडियो लगाया जाए और देहात के लोगों को फायदा पहुंचे, इसलिए आम जनता में रेडियो सुनने की अनुकूलता की जाए।
0: यूं तो आज रेडियो शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रहा है, लेकिन आरंभिक दिनों में इसका उद्देश्य देशवासियों खासकर युवाओं में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना था।
1: 10 जनवरी 1959 को लखनऊ के रंग भवन में आयोजित समाज शिक्षा समारोह में लोगों को संबोधित करते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इसे शिक्षा के प्रसार का सशक्त माध्यम बताया था।
3: साक्षरता का बड़ा महत्व है और उसे बढ़ाना चाहिए, मगर मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि साक्षरता के अलावे बिना निरक्षर लोगों को भी हमें आज शिक्षित करना। शिक्षित शब्द एक तरह से संकुचित भाव में आज इस्तेमाल होता है और उसका अर्थ हम

0: ये मान लेते हैं कि जो आदमी लिख लेता है, पुस्तकों को पढ़ लेता है, वही शिक्षित है। मेरा ख्याल ये है कि बिना लिखे हुए, बिना लिखना जानते हुए और बिना पढ़ना जानते हुए भी मनुष्य को बहुत प्रकार की शिक्षा मिल सकती है, जो उसके जीवन के लिए, जो समाज के लिए, जो संसार के लिए लाभकारी होगी। आज तो ये शिक्षण का काम बहुत प्रकार से कुछ आसान भी हो गया है। हम जानते हैं कि हमारे देश में प्राचीन काल से गांव-गांव में सब लोग बैठ करके शास्त्रों की कथा, ग्रंथों का पाठ दूसरों से सुना करते थे और केवल कान के द्वारा बिना अक्षर पढ़े हुए, बिना पुस्तकों का ज्ञान प्राप्त किए हुए वो बहुत सी बातें जान लेते थे और सीख लेते थे। और इतना ही नहीं, दर्शन के गूढ़ से गूढ़ तत्व भी ऐसी भाषा में लोगों को बताए जा सकते थे कि जो बड़ी बड़ी फिलॉसफी की पुस्तकों में जल्दी नहीं मिलती और आसानी से समझाई नहीं जा सकती। तो मैं चाहूँगा कि कोई भी जो जन साधारण में शिक्षण का काम प्रचारित करना चाहे, उसको इस साधन को छोड़ना नहीं चाहिए और उससे अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए।
1: राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की इच्छा थी कि रेडियो के माध्यम से लोगों तक केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि ज्ञान विज्ञान भी पहुंचे, और वो भी सहज और सरल ढंग से।
0: आपने रेडियो का जिक्र किया, रेडियो तो घर घर में पहुंच सकता है। मैं चाहूँगा कि इन साधनों को अधिक से अधिक उपयोगी बनाकर शिक्षा देने के ख्याल से कार्यक्रम इनका बनाया जाए और इनके द्वारा शिक्षा का प्रसार किया जाए कि जिसमें वो लोग भी जो साक्षर नहीं हैं, जो पुस्तकें नहीं पढ़ सकते, जो समाचार पत्र भी नहीं पढ़ सकते, उनको भी सब प्रकार के ज्ञान प्राप्त हो सकें और हर तरह की बातें वो जान सकें। मैं समझता हूँ कि ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है और शायद जितना समय साक्षरता प्रचार के बाद ज्ञान पहुँचाने में लगेगा, उससे बहुत कम समय में इस प्रकार से हम साधारण लोगों के पास दूर से दूर के गांवों में, पहाड़ों में और जंगलों में बसने वाले लोगों तक हम ज्ञान पहुंचा सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं है कि उनके पास हम कथा कहानी पहुंचाया करें, उनके पास जैसे बच्चों को कहानियां कह करके बुलाते हैं, उस तरह से कहानियां कह करके उनको हम खुश रखने का प्रयत्न करें। उनको कठिन से कठिन विषय में अगर हम ठीक तरह से समझाएंगे तो उनको हम समझा सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि आज के आधुनिक विज्ञान के युग में विज्ञान की बातें भी आसानी के साथ लोगों को मामूली तौर से बताई जा सकती हैं, जिनसे उनको साधारण ज्ञान प्राप्त हो जाए और वो विज्ञान के तत्वों को समझ सके।
2: स्वाधीन भारत में सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का महत्वपूर्ण माध्यम बना रेडियो। प्रसारण की महत्ता समझने वाले आकाशवाणी में वरिष्ठ अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके धीरंजन मालवे मानते हैं कि आकाशवाणी केवल सूचना और मनोरंजन का साधन ही नहीं बल्कि लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ भी है। वे इसे जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच संवाद का एक सशक्त माध्यम मानते हैं।
3: लोकतंत्र यानी ऐसा शासन जो जनता का हो, जनता के लिए हो और जनता के द्वारा हो। ऐसी व्यवस्था की सफलता के लिए जनता में अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता अत्यंत आवश्यक हो।

0: ऐसे में आज़ादी के बाद देश के समक्ष यह एक बड़ी चुनौती उभर कर आई कि जो जनता सदियों से गुलामी की बेड़ियों से जकड़ी रहती आई है, उसे लोकतंत्र के मूल्यों, भावनाओं और प्रक्रिया में कैसे प्रशिक्षित किया जाए। स्वतंत्र भारत में रेडियो ने इस क्षेत्र में अहम भूमिका निभाई है। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तब देश में केवल 12% लोग साक्षर थे। साथ ही भारत की लगभग 80% आबादी गांव में रहती थी। फलतः प्रिंट मीडिया की पहुंच अत्यंत सीमित थी और रेडियो से अधिक कारगर कुछ नहीं हो सकता था।
1: 1950 में भारत ने स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाया। संवैधानिक व्यवस्थाएं स्थापित होने लगीं और ऑल इंडिया रेडियो साक्षी बना समृद्ध होते लोकतंत्र का, साक्षी बना गणतंत्र की स्थापना का।

0: 1950 में पहले गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन इरविन स्टेडियम में किया गया, जिसे अब मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। इतिहास की इस अविस्मरणीय घटना को जन जन तक पहुंचाया आकाशवाणी ने।
1: 1955 से गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन राजपथ पर किया जाता रहा है, जिसे अब कर्तव्य पथ कहा जाता है।

और तालियों की गड़गड़ाहट मिल रही है इस टैंक को और यूनिट को। थल सेना अध्यक्ष के 3 प्रशंसा पत्र, जीओसीएनसी के 2 प्रशंसा पत्र प्राप्त करने का गौरव हासिल है। पीले रंग का ये टैंक देखने में बहुत ही सजीला लेकिन मारक क्षमता में बहुत ही घातक, और ये सलामी दी नाल झुका करके सल्यूट करते हुए उस पर जो एक सैनिक है, और ये टैंक दस्ता बढ़ता हुआ धीरे धीरे इंडिया गेट की तरफ सलामी मंच के ठीक सामने, और पहले एक टैंक उसके पीछे 2 टैंक और

0: पहली लोकसभा के चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच कराए गए। 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन हुआ। नवगठित सरकार में डॉ. बालकृष्ण विश्वनाथ केसकर सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाए गए। वे 10 वर्षों तक इस पद पर रहे।
1: भारतीय संस्कृति के पक्षधर डॉ. बालकृष्ण विश्वनाथ केसकर को शास्त्रीय संगीत, गीत भजन और लोकगीत बहुत प्रिय थे। उनका मानना था कि फिल्म संगीत समाज को संस्कारित नहीं करता। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने फिल्म संगीत का रेडियो से प्रसारण कम करा दिया और शास्त्रीय संगीत को प्रोत्साहित किया।

0: रेडियो से फिल्मी गीतों के प्रसारण बंद होने के फैसले का व्यवसायिक लाभ लेते हुए रेडियो सिलोन ने हिंदी फिल्मों के लोकप्रिय गानों पर आधारित कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू कर दिया। भारत के रेडियो श्रोताओं पर इसका असर ये हुआ कि वे समाचारों के लिए बीबीसी और मनोरंजन के लिए रेडियो सिलोन सुनने लगे।
1: उन दिनों ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक थे जगदीश चंद्र माथुर। उन्होंने श्रोताओं की नब्ज को समझा और आकाशवाणी के कई कार्यक्रमों का स्वरूप बदल डाला। उनके समय में आकाशवाणी से अखिल भारतीय स्तर के कई नए कार्यक्रम आरंभ किए गए।
0: 1950 में आकाशवाणी में वाद्य वृंद स्थापित किया गया।
1: आइए सुनते हैं लक्ष्मी शंकर वाजपेयी को।
2: कि वाद्य वृंद आकाशवाणी का राष्ट्रीय वाद्य वृंद, वो इतनी बड़ा एक वो प्रतिष्ठित एक हमारा एक वो आयोजन वो था कि जब भी कहीं देश में किसी बाहरी देश का राष्ट्राध्यक्ष आते थे, चाहे कनेडी जी आए हों चाहे क्रुश्चेव आए हों, तो आकाशवाणी का वाद्य वृंद जाता था वहां पर राष्ट्रपति भवन जहां भी है, तो वहां पर वो अपनी प्रस्तुतियां करने के लिए। और जब भी कोई राष्ट्रीय किसी तरह का राष्ट्रीय आयोजन हो तो हमारा वाद्य वृंद वहां जाता था। जब मैं था तो ये प्रयास हमने किया कि जो भी कलाकार थे उनको लिया और बाहर से कलाकार लिए और वाद्य वृंद को पुनर्जीवित हुआ। बल्कि एक बार तो वहां जाके एक राष्ट्रीय आयोजन में भी बजाया हमारे वाद्य वृंद में जाकर के, फिर जाकर जो हमारा ये जो एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई थी कृषि मंत्रालय की तरफ से, तो वहां प्रस्तुति दी, हैबिटेट सेंटर में दो बार प्रस्तुति दी, पूरा सभागार जिस तरह भरा हुआ था और 45 लोग जो है करीब करीब 50 लोग साथ लेके तरह तरह के बैठे हैं, वो दृश्य अपने आप में बड़ा अनुपम होता है। जब वो भारत को तरह तरह की उसमें नए नए वो प्रस्तुतियां दी गई, जिसमें एक भारत वाली प्रस्तुति थी कि कैसे वाद्य वृंद के माध्यम से कश्मीर से लेके फिर पंजाब से लेके चलते चलते और पूरे कन्याकुमारी दक्षिण भारत तक जाना और संगीत के माध्यम से पूरी यात्रा, या फिल्म संगीत क्योंकि 100 साल हुए थे सिनेमा के, तो उस पर एक विशेष जो प्रस्तुति थी लोग दीवाने हो जाते थे, इतनी शानदार वो प्रस्तुति होती थी। और देहरादून में वैली ऑफ वर्ड्स इंटरनेशनल फेस्टिवल में हमारा वाद्य वृंद गया, तो बहुत जगह पर प्रस्तुतियां दी और बहुत सारी प्रशंसा लूट करके वो लोग लाए। उनका समर्पण और उनका उनकी प्रस्तुतियां वो उसके लिए जो है वो एक बहुत बड़ी एक काम, मतलब आकाशवाणी दिल्ली की एक बहुत बड़ा योगदान इस तरह का था कि उस वाद्य वृंद को एक रिवाइव करना। और यही वो कार्यक्रम था एक बार जब इस वाद्य वृंद की प्रस्तुति में, शायद ऐसा इतिहास में बहुत कम हुआ होगा, जब भारत के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित नेहरू दोनों ने वहां पर उस कार्यक्रम में मौजूद थे सिर्फ आकाशवाणी के वाद्य वृंद को सुनने के लिए। और वो आप सोचिए कि फिल्म संगीत के जो पुरोधा अनिल विश्वास, वो अपना सिनेमा का वो सारा ग्लैमर छोड़ करके और इस राष्ट्रीय उसमें शामिल हुए। इसमें पंडित रविशंकर भी जुड़े थे, इसमें देश के बड़े मूर्धन्य जो है वो संगीत के कलाकार, उन्होंने मतलब कंपोजर के नाते या प्रस्तुति में किसी दूसरे रूप में वो शामिल रहे।

0: जुलाई 1952 में संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जुलाई 1953 में नेशनल प्रोग्राम ऑफ टॉक्स, अक्टूबर 1954 में आकाशवाणी संगीत सम्मेलन और अगस्त 1955 में सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान माला शुरू की गई।
1: गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 25 जनवरी को सर्वभाषा कवि सम्मेलन का प्रसारण शुरू किया गया। साथ ही 15 अगस्त 1956 से नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम, 16 अगस्त 1956 से रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम और 1961 से संसद समीक्षा की शुरुआत की गई। हिंदी वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम की शुरुआत भी उन्हीं दिनों में की गई थी।
0: कार्यक्रमों में इन बदलावों का असर ये हुआ कि देश के करोड़ों श्रोता आकाशवाणी के दीवाने हो गए। केवल श्रोता ही नहीं बल्कि देश के कई विद्वानों, साहित्यकारों, चिंतकों और विचारकों पर भी इन कार्यक्रमों का असर हुआ और वे भी आकाशवाणी से जुड़ने लगे।
1: सुमित्रा नंदन पंत, रविन्द्रनाथ टैगोर, उपेंद्रनाथ अश्क, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, गिरिजा कुमार माथुर, गोपाल दास, डॉक्टर नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्ण चंद्र, अली सरदार जाफरी, आद्य रंगाचार्य शास्त्री, सआदत हसन मंटो, इला चंद्र जोशी, दुष्यंत कुमार, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, खुशवंत सिंह, प्रभाकर माचवे जैसे कवियों, शायरों, गीतकारों, नाट्यकर्मियों ने आकाशवाणी के माध्यम से अपने प्रशंसकों के दिलों में स्थान बनाया।
0: भारतीय श्रोताओं की रेडियो सिलोन के फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रमों में रुचि को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने भी अपना स्वयं का एक मनोरंजन चैनल शुरू करने का फैसला किया।
1: इसकी परिकल्पना की पंडित नरेंद्र शर्मा ने।

0: परिणाम ये हुआ कि रेडियो के श्रोताओं ने 3 अक्टूबर 1957 को एक ऐसा अनाउंसमेंट सुना जिसको सुनकर सभी के दिल झूम उठे। वो घोषणा थी,
1: ये विविध भारती है, आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम। पंचरंगी यानी 5 रंगों वाले कार्यक्रम। विविध भारती के 5 रंग थे, गीत, संगीत, नाटक, समाचार और साहित्य। विविध भारती के पंचरंगी कार्यक्रम शुरू हुए तो फिर वे छा गए श्रोताओं के दिलों पर। इनमें से कुछ कार्यक्रमों की संगीतमय पहचान आज भी श्रोताओं के दिलों में ताजा है।
2: आइए सुने कार्यक्रम हवा महल।

0: संगीत सरिता
1: तीन अक्टूबर 1957 को विविध भारती के प्रसारण का शुभारंभ पंडित नरेंद्र शर्मा के लिखे और सुप्रसिद्ध संगीतकार अनिल बिस्वास के संगीतबद्ध किए इस गीत से हुआ।

0: यही वो दिन था जब ऑल इंडिया रेडियो का हिंदी नाम आकाशवाणी उद्घोषित किया गया।
1: बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की भावना से कार्य करते हुए आकाशवाणी से ऊंच नीच जाति धर्म क्षेत्र और भाषाई संस्कृति का भेद किए बिना सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रसारण होता रहा। यही कारण है कि आज देश के हर वर्ग का श्रोता आकाशवाणी को अपना मानता है और इससे जुड़ना चाहता है।
0: आकाशवाणी के विकास और विस्तार की कुछ और रोचक कहानियों और जानकारियों को लेकर हम अगली कड़ी में फिर उपस्थित होंगे। अब अनुमति दीजिए।

अभी आप सुन रहे थे प्रसारण की प्रतिध्वनियां, इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। वाचन स्वर थे निशा भारद्वाज और देवेंद्र त्रिपाठी के। लेखक और प्रस्तुतकर्ता पार्थ सारथी थपलियाल और अशोक अग्रोही। संपादन एवं प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह। परिकल्पना एवं निर्देशन मनीषा जैन और प्रमोद कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क

0: में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल की पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
1: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉ. अलका गुर्जर और डॉ. सतीश पुनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज मिजोरम के चंफाई जिले में 9 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई म्यांमा से अवैध रूप से लाई जा रही सुपारी की तस्करी और 970 करोड़ रुपए से अधिक की आपराधिक आय से जुड़े धन शोधन के मामले में की गई। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज केरलम पहुंच गया है। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुद्दुचेरी और कराईकल में भी कल तेज बारिश होने की संभावना है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मीन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। Prime Minister Narendra Modi today held talks with acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. The two leaders reviewed the full spectrum of bilateral relations and explored new avenues of cooperation in energy, trade, investment, healthcare and automobiles, among others. In a social media post, Mr. Modi said they had extensive discussions on expanding cooperation in energy, critical minerals, technology, agriculture, health and people-to-people ties. He said that as a valued partner in Latin America, India's close cooperation with Venezuela holds immense importance for the Global South. He said both nations will continue to work together for the mutual benefit of the people of the two countries. Addressing media after the talks, Secretary East Rudrinder Tandon said Venezuela possesses one of the largest oil reserves in the world. He said today's discussions between the two sides focused on forging an energy partnership between the two countries, as Venezuelan energy sector is undergoing a fundamental transformation. Union Home Minister Amit Shah today said that Narendra Modi government ended the era of violence in the northeast and transformed the region from the hotspot of disputes to that of opportunities. After attending the 73rd plenary session of the Northeastern Council, NEC, Mr. Shah, in a social media post, said, "Today, NEC is serving as an institution for strategic planning for the development of

0: region while fulfilling people's aspirations and promoting culture. In the NEC meeting, the Home Minister instructed CMs to shift the focus from law and order to shielding the rights of citizens as insurgency is no longer an issue. He also directed states to build AI, machine learning and blockchain infrastructure for new generations. Mr. Shah said that he also instructed to market Northeast potential in agarwood, foreign trade and health tourism. Prime Minister Narendra Modi today said yoga is India's timeless gift to humanity, virtually joining the inaugural edition of the World Yogasan Sports Championship being held at the EK Arena in Ahmedabad. The Prime Minister said yoga unites mind, body and spirit and inspires a healthier and more harmonious world. He expressed confidence that the maiden World Yoga Championship will give Yogasan a global sports identity and open up a wide range of opportunities for the youth. Mr. Modi highlighted that every major sport brings among and along its own comprehensive ecosystem. He stated that Yogasan sports expand globally. It will create significant new possibilities and career paths for athletes. The Ministry of Women and Child Development has invited women students, scholars, social activists and teachers for its internship program during August-September term. The program is open to women students, scholars, social activists and teachers who are enrolled in or associated with any university, academic or non-academic institution. The Ministry of Women and Child Development informed that women candidates in the age group of 21 to 40 years from non-tier 1 cities and rural areas of India are eligible to apply. It added that applicants are to be submitted online through the internship program portal wcd.intern.nic.in. The Bharatiya Janata Party announced that the party Manipur President Adhikari Mayum Sharda Devi will be party candidate for the upcoming Rajya Sabha election of Manipur. The party announced today that the party's prominent woman leader of Manipur will contest the lone Rajya Sabha seat of Manipur, which voting will be held on 18th June. It may be mentioned that the term of the current Rajya Sabha MP of Manipur, Leshimba Sanaja Uba, who represents the Bharatiya Janata Party, ends on 21st of June. India has retained its strong presence in the latest world boxing rankings. Jasmine Lamboria climbed to world number one in the women's 57 kg category, while Asian Championships Priya Gangas in 60 kg and Vishwanath Suresh in 50 kg. And that's the end of the news.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल, नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वी के पॉल और बिलासपुर एम्स के अध्यक्ष डॉक्टर एन के अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं प्रियंका अरोड़ा।
2: दिस इज आकाशवाणी। In the special series, now we bring you a discussion on 12 years of the Modi government transforming healthcare. Participants are Dr. V.K. Paul, former member, Niti Aayog, and Dr. N.K. Arora, President, AIIMS Bilaspur. Moderator is Priyanka Arora.
3: स्वस्थ नागरिक किसी भी सशक्त और समृद्ध राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम के मंत्र को आत्मसात करते हुए भारत ने पिछले 12 वर्ष में स्वास्थ्य क्षेत्र में परिवर्तन की एक नई गाथा लिखी है। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, गरीबों के लिए उपचार की बेहतर व्यवस्था, आधुनिक अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों का विकास तथा डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का बढ़ता दायरा, इन सभी ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई दिशा और नई गति दी है। यही परिवर्तन आज करोड़ों भारतीयों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का आधार बन रहे हैं। मोदी सरकार के 12 साल नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति विषय पर आज हम स्वास्थ्य क्षेत्र में उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वी के पॉल और एम्स बिलासपुर के अध्यक्ष डॉक्टर एन के अरोड़ा। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
4: बहुत-बहुत नमस्कार।
3: तो जी, कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर पॉल, आपसे जानना चाहती हूँ कि पिछले 12 वर्ष में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में आए सबसे बड़े संरचनात्मक बदलावों को आप किस रूप में देखते हैं?
4: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विजनरी लीडरशिप में स्वास्थ्य क्षेत्र में अनप्रेसिडेंटेड जो कभी नहीं हुए वो रिफॉर्म्स हुए और वो बदलाव आया है। इसके बहुत सारे डायमेंशन है, लेकिन मैं सर्वोपरि अगर उन डायमेंशन को देखूँ तो जो एक्सेस टू हेल्थ केयर बढ़ी है
3: जी,
4: और जो हेल्थ केयर की वजह से जो बोझ पड़ता था नागरिक पे, खासकर जो गरीब परिवार है, इन दोनों में सुधार लाने के लिए, एक्सेस को बढ़ाने के लिए और जो आर्थिक बोझ स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने के लिए पड़ता था, उनमें जो कमी आई है, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी उपलब्धि वो है। इसको हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की नज़र से भी देख सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएँ मिले, और जब स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं तो व्यक्ति की और सिटीजन जेब के ऊपर बोझ नहीं पड़ना चाहिए। ये जो हुआ है वो जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और उसी के साथ साथ उसी बजट स्पीच में 2018 के बजट के अंतर्गत आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, अब उनको हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहते हैं
3: जी,
4: जो हमारी प्राइमरी केयर की व्यवस्था बनी और जो सेकेंडरी और टर्शरी केयर में हेल्थ सर्विसेज को पहुंचाने के लिए जो एक मैकेनिज्म बना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत, मैं समझता हूँ कि इन दोनों को जोड़ के देखूँ तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ जो सुधार और जो जन जन तक इसका फायदा हुआ है उसको मैं सबसे बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ।
3: जी हाँ, यह अभूतपूर्व पहल रही है और आज भी विश्व में सबसे बड़ी योजना के रूप में मानी जाती है। डॉक्टर अरोड़ा, अगर आपसे जानना चाहें तो जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पिछले 12 वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि आप किसे मानते हैं?
5: जैसे कि प्रोफेसर पॉल ने कहा कि एक आम व्यक्ति के जेब से आज से 12 वर्ष पहले अगर वो 100 रुपए डॉक्टर की इलाज पे या अपनी किसी बीमारी के इलाज पे खर्च करता था तो उस समय 60 रुपए उसकी जेब से जाते थे, आज ये घट करके 35-40 रुपए के बीच में आ गया है। ये एक आमूल परिवर्तन है। और दूसरी चीज जो डॉक्टर पॉल कह रहे थे, जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनको इस स्ट्रैटेजिक तरीके से रणनीतिक तौर पर इनको बनाया गया है कि किसी भी व्यक्ति को इस देश में 2 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलने की जरूरत नहीं होती। यानी कि 2 किलोमीटर का जो दायरा है, रेडियस है, उस बीच में एक आयुष्मान मंदिर है
3: जी।
5: तो जिसको हम एक्सेस है या स्वास्थ्य सेवाओं की प्रति जो उसकी प्राप्ति के लिए उसकी जो सुविधा है वो उसमें बहुत जबरदस्त परिवर्तन किया गया है। दूसरा एक चीज और है, मेड इन इंडिया या भारत में निर्मित जो एक पूरा का पूरा अभियान चला है उसके अंतर्गत कई चीजें हुई हैं। और मैं यहाँ पर टीकाकरण क्षेत्र का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा कि अब इस देश में 100% जो टीके हैं वो भारतीय दिए जाते हैं
3: जी।
5: कोविड के दौरान जो 228 करोड़ टीके दिए गए वो पूरे के पूरे भारत में निर्मित थे, और उसकी वजह से जो देश में बचाव हुआ उसके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। एक और चीज करी गई है और जो मेड इन इंडिया की तरफ बहुत बड़ा कदम रहा है कि अनुसंधान में बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिससे कि हमारी इलाज करने की तरीके, इलाज करने के लिए दवाइयां, इलाज करने के लिए वैक्सीन और किसी भी बीमारी के लिए अब भारत में सुविधाएं उपलब्ध कराना, उसमें आशातीत वृद्धि हुई है। आज से 12 साल पहले लोगों को बाहर जाना पड़ता था, अब किसी भी इलाज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, चाहे आप किसी भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से आए।
3: जी बिल्कुल डॉक्टर अरोड़ा, और हम जब आयुष्मान भारत की बात करते हैं, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना मानी जाती है, तो ये किस तरह से स्वास्थ्य क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हुई है डॉक्टर पॉल?
4: हमारे देश में सुविधाओं की कमी रही कई सालों तक, उसके साथ साथ में सिटीजन को अपने आप को स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने के लिए जो खर्चा होता था उसका समाधान का तरीका निकाला गया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 60 करोड़ हमारे जो नागरिक हैं, 60 करोड़
3: जी,
4: उनको 5 लाख का कवरेज हर साल उनके परिवार के अंदर 5 लाख का कवरेज जो है वो सेकेंडरी टर्शरी केयर के लिए दाखिला जब होता है अस्पताल में तो वो सरकार कवर करती है
3: जी।
4: और इसके साथ साथ बहुत सारे राज्यों ने और भी अपने अपने नागरिकों को एक्स्ट्रा भी जोड़ लिया है।

0: ये जो सेवाएं दे जा रही हैं ये लगभग 1900 से ज़्यादा पैकेजेस की तरह से है कि आपको डेंगू का बीमारी हुई तो एक पैकेज डेंगू का है, आपको घुटने के रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है एक पैकेज है। आप सोच सकते हैं कि हमारे सबसे ज़्यादा जो मार्जिनलाइज्ड हमारे नागरिक भाई बहन हैं बच्चे हैं उनको टर्शरी केयर में हार्ट की सर्जरी,
1: जी
0: आप नी रिप्लेसमेंट और इवन किडनी ट्रांसप्लांट और बुखार की बीमारी, इनकेफेलाइटिस, स्ट्रोक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ब्लड की बीमारियाँ, कैंसर, इन सब बीमारियों को उनको कैशलेस, उनको सामने पैसा नहीं देना है और उनको सेवाएं मिल रही हैं 30,000 से ज़्यादा अस्पतालों में, जिनमें कि कम 12,000 प्राइवेट हॉस्पिटल भी जुड़े हुए हैं। तो प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़ दिया गया
1: जी
0: एक आम नागरिक के लिए, ये एक बहुत बड़ी इनोवेशन है। आयुष्मान भारत PMJ के अंतर्गत हर रोज 85 से 90 हज़ार व्यक्ति अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं और उनका मुफ्त इलाज हो रहा है, रोज 80 से 90 हज़ार। अभी तक 10 करोड़ से ज़्यादा ऐसे दाखिले हो गए हैं, 10 करोड़ से ज़्यादा। देखिए कितने लोगों को
1: जी
0: ये फ़ायदा कैशलेस कवरेज का जो हुआ है। अगर हम देखें कि इससे कितनी बचत हुई है समाज को, देश के नागरिकों को, तो ये आंकड़ा आता है 1,52,000 करोड़ का फ़ायदा जो
1: जी
0: है वो यहाँ तक पहुँचा है। लेकिन अगर हम इसको दूसरी तरह से देखें कि इससे मेरे को रीच कैसे बढ़ी, तो जब शुरू हुआ था तो जो बेनिफिशरीज है, लाभार्थी हैं, उनमें लगभग एक 0.7%, less than 1% ही बेनिफिशरीज का फ़ायदा ले रहे थे। लेकिन जैसे जैसे प्रोग्राम मैच्योर हुआ, आपको जान के खुशी होगी कि आप 2 से 2.5% लोग, मतलब कि 2.5 से 3 गुना बेनिफिशरीज को एक्सेस अब मिल रहे हैं। तो लोग बैठे रहते थे, अब इसको अपनी सेवाओं का को लेके जाते हैं। कैंसर से पीड़ित व्यक्ति जो है, एक स्टडी हमें दिखाती है कि जिनको PMJ का कवरेज नहीं है वो टाइम पे पहुंचते हैं 30% लोग सिर्फ, और आयुष्मान भारत के जो लाभार्थी हैं वो 90% लोग टाइम पे पहुंच पा रहे हैं सेवा, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पास ताकत है इलाज
1: जी
0: लेने के लिए। बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि 2024 से इस कार्यक्रम के साथ में 70 और 70 से ज़्यादा उम्र के सभी नागरिकों जोड़ दिया गया है, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, अमीर गरीब सब के लिए।
1: जी
0: तो ये 6 करोड़ नागरिक हैं जिनको कि एक्स्ट्रा एक आयुष्मान भारत में जगह मिली है। ये लगभग 4.5 करोड़ फैमिलीज परिवारों को बिलोंग करते हैं, और मुझे खुशी है बताते हुए कि 1 करोड़ से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन इस कार्यक्रम के अंतर्गत वयो योजना जो है PMJ की, उसके साथ जोड़ के वयोवंदन योजना में ये समावेश हुआ है। तो जो सबसे नीडी लोग हैं उनको, क्योंकि उस उम्र पे ज़्यादा बीमारियां होती हैं, तरह तरह की बीमारियां होती हैं, तो उस समाज को प्रोटेक्ट करना और इस स्कीम के साथ जोड़ना एक बहुत बड़ी बात है और
1: जी
0: उपलब्धि है। ये इतने बड़े स्केल के ऊपर रोज दाखिले हो रहे हैं और उन सबका इलाज हो रहा है, और इससे गरीब की जेब पे बोझ कम हुआ है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि उनको एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर मिलना शुरू हो गया है।
1: बिल्कुल। और डॉक्टर अरोड़ा, अगर मैं आपसे बात करूं, आप लंबे समय से टीकाकरण कार्यक्रमों से जुड़े रहे हैं। मिशन इंद्रधनुष और कोविड टीकाकरण अभियान ने भारत के जो सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र को किस प्रकार मजबूत किया है?
2: ये जब आप टीकाकरण की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में इस चीज को सराहा गया है। 2014 में कुल 63% बच्चों में संपूर्ण टीकाकरण होता था और आज ये बढ़कर के 93-94% हो गया है। अभी NFHS का डेटा 2 दिन पहले आया है 2024-25 का, एक्चुअली उसमें डेटा 22-23 का है।
1: जी जी
2: और उसके हिसाब से 88.7% बच्चों में संपूर्ण टीकाकरण उपलब्ध हो रहा। और इसका कारण, और आपने मिशन इंद्रधनुष का जो उदाहरण दिया कि जो बच्चा रह जाए जिसको टीका नहीं मिला हो उसको देने का प्रयास किया गया, और साथ ही साथ गर्भवती महिलाएं जिनको टिटनेस का टीका नहीं मिला उनको भी देने का। लेकिन ये टीका खाली कहने भर से नहीं है। इस कार्यक्रम में जो नवाचार किया गया कि इस देश का हर बच्चा जो टीकाकरण के लिए उसका अधिकार था उसको मैप आउट किया गया, उसकी पहचान की गई और उस तक पहुंचने का प्रयास किया गया। और यह जो प्रयास था जिसको हम माइक्रो प्लानिंग कहते हैं, ये हम सीखे खास तौर पे जब हम पोलियो उन्मूलन कर रहे थे। पूरे के पूरे टीका

0: में हमारा अब हर बच्चा हर महिला जो है हमारे एक तरीके से हाथ पे लिखा रहता है। और अब इसको आगे ले जाकर के यूविन आईटी प्लेटफॉर्म है जिससे कि हर एक एक हमारी रजिस्ट्री बन गई है जिसमें बच्चों को टीकाकरण दिया जाता है। लेकिन इसका मुख्य लाभ जो हुआ है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुदृढ़ता आई है, क्योंकि अब जब मैं बच्चों के तक पहुंचता हूं, गर्भवती महिलाओं तक पहुंचता हूं, तो खाली टीकाकरण नहीं है, उनके स्वास्थ्य से संबंधित बाकी जो समस्याएं हैं उनको भी वहां तक लेके जाने का प्रयास किया जा रहा। साथ ही साथ जो ये माइक्रो प्लान वाला सिस्टम है, इसका प्रभाव हमारी जो क्रॉनिक बीमारियां हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के द्वारा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये खास तौर पे दो बड़ी बीमारियां हैं,
1: जी
0: ये भी अपने आसपास के जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के चारों तरफ लगभग 5,000 की पॉपुलेशन होती है, वहां तक पहुंचाने में भी इसी उपक्रम का प्रयोग किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के जो भी नवाचार किया जा रहा है टीकाकरण में, उसका प्रभाव खाली बच्चों की और महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं पर सुदृढ़ नहीं हुआ है, लेकिन बाकी स्वास्थ्य सेवाओं पर भी प्रभाव पड़ा है। और मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि इस समय जो भारत का टीकाकरण कार्यक्रम है, वो हमारी सारी की सारी सरकारी जो जो भी हमारे कार्यक्रम है, अभियान है, उसमें सबसे ज्यादा कवरेज या पहुंच जो है टीकाकरण कार्यक्रम की है। इस देश के लगभग 97% जो टीकाकरण के अधिकारी हैं उन तक कम से कम एक टीका लग चुका है। तो
1: जी
0: यही एक रास्ता है जिससे कि बाकी जो सेवाएं हैं उनको भी पहुंचाया जा सकता है।
1: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अभी डॉक्टर अरोड़ा ने आयुष आरोग्य मंदिरों की बात की और बहुत ही महत्वपूर्ण है प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिहाज से। और अभी देश में 1,70,000 से अधिक हमारे यहाँ आयुष्मान आरोग्य केंद्र हैं। तो अगर बात करें आयुष्मान भारत जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसका विस्तार किया जा रहा है ताकि जो आयुर्वेद है और आयुष उपचारों को उसमें शामिल किया जा सके, तो सरकार कैसे आधुनिक और पारंपरिक चिकित्सा को एक साथ लेकर चल रही
2: मैंने
1: है?
2: आपके सवाल में दो हिस्से हैं।
1: जी
2: पहले मैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर की जो बात कही है उसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूँगा।
1: जी
2: किसी भी देश में स्वास्थ्य सेवाओं में जो प्राइमरी केयर होती है, प्राथमिक सेवाएं
1: जी
2: जो होती हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में प्राथमिक सेवाओं में जो सुदृढ़ता आई है, हमारे सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर सालों से काम निभा रहे थे बिल्कुल लिमिटेड तरीके से, जितना भी कर पा रहे थे लिमिटेड था। 2018 में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिनको आज हम आयुष्मान आरोग्य मंत्र कहते हैं, उनकी संरचना, उनकी सोच लेके आए, जो एक लिमिटेड प्राथमिक सेवाएं होती थी, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ या संक्रमित बीमारियों की, इन्फेक्शस बीमारियां, कम्युनिकेबल डिजीज की, वो तो करना ही है, उसमें भी और डेप्थ और इंटेंसिटी लेके आए। लेकिन जो नहीं हो रहा, जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटीज़ की बीमारी इतनी प्रोमिनेंट है, कैंसर, अब ये सेवाएं प्राथमिक सेवाओं में आयुष्मान आरोग्य में निहित हो गई कि हम इनको एक सीमित तरीके से, सीमित इन द सेंस कि पीरियोडिक,
1: जी
2: इतने साल के बाद हर व्यक्ति का एक चेकअप होगा, हर साल ब्लड प्रेशर चेक होगा, हर साल शुगर चेक होगी डायबिटीज़ के लिए, और कैंसर 3 साल में, 5 साल जैसा प्रोटोकॉल है, उस पर 3 कैंसर, मुंह का कैंसर, कैंसर सर्विक्स, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर लेडीज में, और ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर, इसकी सबकी स्क्रीनिंग होगी। इसके अलावा मेंटल हेल्थ को साथ में जोड़ा गया, आई आँख का इलाज, ENT कान का इलाज, नाक का इलाज, डेंटल हेल्थ, फिर एल्डरली केयर को भी जोड़ा गया इसमें। तो 12 पैकेजेस बने, शुरू के 5 पैकेजेस 4 पैकेजेस की बजाय उसका आयाम बढ़ गया। अब और इंटरेस्टिंग बात देखिए, 1,70,000 ये बने, उसमें दो तरह के हैं, एक सब सेंटर लेवल का होता है 6,000 पॉपुलेशन के लिए, और एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का होता है लगभग 30,000 का उसका दायरा होता है। कुल मिला के ये यूनिट बन जाता है, एक PHC वाला आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 5 या 6 या 4 या 5 सब सेंटर वाले आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन जाता। अब बिल्कुल आश्चर्य भी होगा आपको, 1,20,000 नए मिड लेवल प्रोवाइडर्स, इनको करने के लिए टीम को बढ़ाया। हमारी पुरानी टीम थी आशा वर्कर थे
1: जी,
2: एक गांव में लगभग 1,000 की पॉपुलेशन पे, फिर हमारे पास ANM थे, कहीं कहीं मेल हेल्थ वर्कर होता था, लेकिन 1,20,000 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को लगाया गया है। ये इतनी रेवोल्यूशनरी बात है कि इतने संख्या में एक ह्यूमन रिसोर्स को प्राइमरी केयर के पीछे लगाया गया, और ये टिपिकली BSc पास हमारी नर्सेज होती हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, और सब जगह पे टेलीमेडिसिन का प्रावधान हुआ।

0: सब जगह पे 100 से ज़्यादा दवाइयाँ, सब सेंटर वाले में 105 दवाई और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 170 फ्री मेडिसिन, सब सेंटर वाले में 14 डायग्नोस्टिक टेस्ट फ्री और पीएचसी वाले में 42 से ज़्यादा फ्री डायग्नोस्टिक टेस्ट का प्रावधान किया गया है। तो सारे समाज को, सारे जितनी पॉपुलेशन है उसको एक सूत्र में बांध के कमिटमेंट है कि हम इनका चेकअप करेंगे, कमिटमेंट है कि हम उनको याद दिलाएंगे कि दवाई आपको फ्री मिल रही है, दवाई जब ख़त्म होती है तो अगली दवाई आप लीजिए, ज़रूरत होगी तो टेली मेडिसिन के द्वारा जोड़ा जाएगा, और जो बाकी सेवाएं शुरू से हैं, इम्यूनाइजेशन है, मदर चाइल्ड हेल्थ है, टीबी कंट्रोल है, लेप्रसी, ये जो प्रोग्राम वो तो चल रही है, उनमें भी ताकत है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस प्लानट पर सबसे बड़ा जो प्राइमरी हेल्थ केयर का जो एक रेवोल्यूशनरी काम हो रहा है एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, वो आज हमारे देश में हो रहा है और ये बहुत दूर तक हमें लेके जाएगा। क्योंकि क्रॉनिक बीमारियों को बचाने का तरीका सिर्फ यही होता है कि या तो वैसे ही हम अपने आप को, अपना लाइफस्टाइल ठीक करें, नहीं तो हम डिटेक्ट करें, और प्राइमरी हेल्थ के द्वारा डिटेक्शन भी हो, प्रिवेंशन भी हो, हेल्थ प्रमोशन भी हो, और ज़रूरत पड़े तो फिर ट्रीटमेंट भी हो, जिसमें फिर पीएमसी जुड़ जाता है।
1: बिल्कुल, देखा जाए इतनी बड़ी आबादी है हमारे जैसे देश की, तो घर घर जाकर इस चीज़ की जांच करना और उनको बताना, रोकथाम के लिए उपाय बताना, तो ये बहुत बड़ी बात है।
0: दूसरी बात आपने कही कि हमें ट्रेडिशनल मेडिसिन को जोड़ा गया, बहुत बड़ी बात है
1: जी।
0: ये हिस्टोरिक जब देखा जाएगा तो हिस्ट्री में ये माना जाएगा कि प्रधानमंत्री जी के आने के बाद में जो भारत का अपना सिस्टम थे, आयुर्वेद था हमारा, सिद्ध है हमारे पास, यूनानी है, ये सब हमारे भारत में पपन पे हुए सिस्टम है, ये इन सब की जो योग है वो भी स्वास्थ्य के लिए भी और स्वास्थ्य से भी ऊपर का है, वो उन सब को एक मेन स्ट्रीम में लाना, उनको लिए बजट प्रदान करना, उनके सिस्टम को स्ट्रेंथन करना और उनको एक इंटीग्रेटिव अप्रोच में जोड़ना, और को जो बढ़ोतरी मिली है वो बहुत बड़ी बात है कि दोनों का समावेश हो, आधुनिक कार्यक्रम, आधुनिक पद्धति का भी हो और ट्रेडिशनल का भी हो, ताकि दोनों मिलके एक व्यक्ति को, एक नागरिक को वो दे पाएँ जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा, स्वास्थ्य रहे, बीमारियाँ नहीं हो, मन भी अच्छा हो, तन भी अच्छा हो और आत्मा भी अच्छा हो, इन सब का जो जोड़ इंटीग्रेटिव अप्रोच में लेके आए हैं, ये भारत का मॉडल जो है ये दुनिया देखेगी। और आयुर्वेद का जो प्रचलन है वो बड़ा है, आयुर्वेद की जो दवाइयाँ हैं उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ी है, हमारे एक्सपोर्ट बढ़े हैं, और बिल्कुल ये मेन स्ट्रीम में दोनों को ले जाने का जो माहौल बना है और जो ताकत आई है, ये भी अनप्रेसिडेंटेड
1: है। बिल्कुल, एक साथ ले जाना तो बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर अरोड़ा, हम जैसे बात कर रहे थे टीकाकरण की भी, तो इन दिनों सरकार जो कैंसर है उसकी डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन पर, स्क्रीनिंग पर बहुत ध्यान दे रही है, और खासकर जो सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है, तो आप आज के परिप्रेक्ष्य में इसे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं?
2: वो HPV वाला टीकाकरण है, और इसके अलावा डॉक्टर पॉल ने 3 कैंसर्स के बारे में बताया, एक तो महिलाओं के बच्चेदानी के मुंह वाला कैंसर जिसको सर्वाइकल कैंसर है, उसी के लिए वैक्सीन है ये
1: जी,
2: उसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर और मुंह का कैंसर, और एक तीसरे कैंसर के लिए वैक्सीन ऑलरेडी दी जा रही है जो हेपेटाइटिस बी है, उसकी वजह से लिवर का कैंसर हो जाता है। तो कैंसर की तरफ जो है, क्योंकि जैसे कि हम सबको मालूम है कि पिछले कुछ समय में हम सब लोगों का ध्यान बहुत अधिक आकर्षित हुआ है कैंसर की बीमारी की तरफ, उसकी स्क्रीनिंग के लिए, जल्दी पहचान के लिए, फिर इलाज के लिए, और इस दिशा में बहुत सारा काम किया गया है। एक तो स्क्रीनिंग के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया, लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और हुई है हमारे देश में इस पिछले 12-13 साल में, एम्स का संख्या 1 से बढ़कर के इस समय 23 एम्स हो गए, जो अपने आप में एक गजब की चीज है। कि और ये एम्स बड़े शहरों में नहीं करे गए, फॉर एग्जाम्पल झारखंड में देवघर करके एक जगह है, कई लोगों को मालूम भी नहीं होता, मतलब ऐसी जगह किया है जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन या पिछड़े इलाकों में किया गया है, हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में है, इसी तरीके से JNK में 2 हैं, और बाकी पूरे कंट्री में इस तरीके से करे गए, और खास तौर पे ऐसे क्षेत्रों में किया गया है एम्स को एस्टैब्लिश, जहां से ज्यादा लोगों के पास टर्शियरी केयर, जो सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, और इनमें कैंसर के इलाज के लिए बिल्कुल आधुनिकतम मशीनें उपलब्ध हैं इन सारे में, ये सब नए इंस्टीट्यूशन है, उसके बावजूद कैंसर की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही साथ अनुसंधान इस तरीके से किया जा रहा है कि जो क्षेत्रीय और स्थानीय समस्याएं हैं और उसमें हमारे कुछ कैंसर स्थानीय तौर पे बहुत होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं तो लेरिंजियल कैंसर, मुंह का कैंसर बहुत कॉमन है और सर्वाइकल कैंसर भी बहुत ज्यादा है। तो उन क्षेत्रों में उन पे विशेष तौर पे ध्यान दे करके उसकी स्क्रीनिंग है, उसके बचाव के लिए क्या तरीका किया जाए, उसके इलाज के लिए क्या किया जाए। और अब ये जो HPV वैक्सीन के बारे में आपने कहा, ये हमारी बच्चियों के लिए 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए है और ये वैक्सीन इतनी सुरक्षित है और वैक्सीन मिलने के बाद कैंसर, सर्वाइकल कैंसर या महिलाओं के बच्चेदानी का मुंह का कैंसर प्रैक्टिकली खत्म हो जाता है। इनफैक्ट WHO की तरफ से ये मुहिम चलाई जा रही है कि ये वैक्सीन के साथ साथ अगर हम स्क्रीनिंग और इलाज करते हैं तो अगले 15-20 साल में इस समस्या से निजात मिल सकती है। तो कुल मिलाकर कैंसर की तरफ जो है बहुत बड़ा ध्यान दिया जा रहा है। कुछ बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, बाकी सरकार जिनको सहायता कर रही है, जैसे टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट है, इनके चारों तरफ पूरे देश में शाखाएं बनाई जा रही हैं और कुल मिलाकर हर एक प्रदेश में कैंसर का एक रीजनल सेंटर बनाया गया है, जिससे कि लोगों को दूर दराज चल करके जाने की जरूरत ना पड़े और घर के पास ही ये सुविधाएं उपलब्ध हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अगर हम आज देखें, आज भारत डिजिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत तेजी से विकास कर रहा है, तो जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है और जो स्वास्थ्य ID जैसी पहले, वो आम नागरिक के लिए जो स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरह से सरल और प्रभावी बना रही है?
0: भारत का जो डिजिटल हेल्थ की तरक्की हुई है वो दुनिया में बिल्कुल अलग और शायद सबसे आगे की तरक्की की तरह मानना चाहिए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शुरू किया गया और उसके जो डिफरेंट स्वरूप हैं उसमें एक है कि हमारे पास हर नागरिक का इवेंचुअली एक डिजिटल आइडेंटिटी होगा, उसको हम आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कहते हैं, आभा। तो आपको हैरानी होगी 87 करोड़ व्यक्तियों का, नागरिकों का आभा आइडेंटिटी आज हमारे पास अवेलेबल है, 87 करोड़, 145 करोड़ में से। इसका क्या फायदा है कि इस सिस्टम के द्वारा, इस आइडेंटिटी के द्वारा जो मेरे हेल्थ के रिकॉर्ड्स हैं वो उसके ऊपर लोड हो सकते हैं, वो पुराने नए अगले सब जुड़ सकते हैं और जब किसी ने इसको देखना है और प्रस्तुत करना है और रिकॉर्ड की तरह भी है तो वो डॉक्टर साहब उसको देख के फैसला कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और जैसे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स हमारे और से और लोड होते जाएंगे, ये एक इनोवेशन का भी जरिया बनेगा और इसमें बहुत सेवा की ईज जो है, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ एक्सेसिंग हेल्थ, वो अचीव होगी। इसमें फिर जो टेली मेडिसिन में जो तरक्की हुई है, जैसे मैंने बताया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में टेली मेडिसिन हो गया है, हमारे पास ई संजीवनी एक टेली मेडिसिन, रोज हजारों कंसल्टेशन उसके ऊपर होती हैं, हजारों, और उसमें इतने डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। उसके अलावा प्राइवेट स्पेस में टेली मेडिसिन हो रही है, इंस्टीट्यूशंस में एक रेवोल्यूशन आ गई है टेली मेडिसिन। उसके और डायमेंशन भी है कि हॉस्पिटल की रजिस्ट्री बनेगी, हेल्थ प्रोफेशनल्स की रजिस्ट्री बनेगी, वो सब काम हो रहा है। लेकिन जो डिजिटल हेल्थ है वो एक हिस्सा बन चुका है हमारे देश में हेल्थ सिस्टम का। हम डिजिटल हेल्थ को इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोग्राम्स को लागू करते हैं, हम बेनिफिशरीज को चिन्हित करते हैं, हम बेनिफिशरीज को फायदे के साथ जोड़ते हैं, उनको ट्रैक करते हैं। सो डिजिटल हेल्थ में जो इतना इतना बदलाव आया है और जो उसकी वजह से हेल्थ की एक्सेस बढ़ी है, एक्यूरेसी बढ़ी है और जो इसका फ्यूचर पोटेंशियल है वो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। और इसके आगे चलते हुए जब इस टेक्नोलॉजी को हम AI के साथ लिंक करेंगे, इस टेक्नोलॉजी के और सॉल्यूशंस होंगे, तो मुझे लगता है कि भारत बिल्कुल अग्रणी देशों में होगा इस काम में।
1: डॉक्टर अरोड़ा, आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन रिगार्डिंग मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इशू। व्हाट प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स ड्यूरिंग द लास्ट 12 इयर्स?
2: We have just seen last 2 days some of the recent data. One of the key issues which has been bothering all of us was stunting in children. And stunting has been traditionally recognized as the quality of health services. And during last, between NFHS 5 and 6, I think the stunting has decreased by 12 or 14 percent points. Now, this is remarkable because this is, jisko kehte hain, bilkul phansi hui cheez thi, jisko ठीक करने में बहुत ही मेहनत लग रहा था। और ये देश भर में पोषण कार्यक्रम शुरू हुआ, महिलाओं का एम्पावरमेंट, उनके पोषण पे विशेष ध्यान देना, उस दिशा में जो काम हुआ है। तो अब हमने देखा है कि बच्चों में जो स्टंटिंग, हमारे यहाँ लगभग 50% बच्चे अपनी पूरी ऊंचाई को प्राप्त और लंबाई को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, वो अब आ गए हैं 29% पे लगभग।

0: लेकिन अभी काम करने की जरूरत है, वो है अनीमिया, खून की कमी है। अब वो गर्भवती महिलाएं हैं, हमारी किशोरी बिटिया लोग हैं और बाकी बच्चों में ये अनीमिया की समस्या ऐसी है। इसकी तरफ जो है अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम आरंभ किया गया है और उस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन वो विकास में और मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि देश के डिफरेंट हिस्सों में अनीमिया के कारण अलग अलग हो सकते हैं और खाने में खास तौर पे उस चीजों का विशेष ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के, और एक तीसरी चीज जो महिलाओं के लिए विशेष तौर पे रहा है कि एक समय था जब हमारे यहाँ केवल 27% महिलाएं अपना प्रसव जो है एक संस्था में करती, चाहे
1: जी
0: सरकारी चाहे प्राइवेट में, आज वो बढ़कर के लगभग 95% हो गया है। ये भी एक अभूतपूर्व उपलब्धि है और इसकी वजह से नवजात शिशुओं की मृत्यु, असमय मृत्यु से उसको कम किया गया है। और साथ ही साथ जो हमारी महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी, मेटरनल मोर्टेलिटी, वो एकदम नीचे आ गई है। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि जो हमारी माताएं हैं और बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य में जो प्रोत्तर विकास हुआ है, उस विकास में एक तेजी आई है, मृत्यु दर में कमी हुई है, चाहे वो माँ हो चाहे नवजात शिशु हो। और इसमें भी हम लोग पूरी कोशिश की जा रही है कि 2030 तक, उससे पहले ही जो हमारे SDG गोल्स हैं उनको
1: जी
0: हम प्राप्त कर सकें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उन चीजों की उपलब्धि प्राप्त कर सकें जिसमें ज्यादातर देश प्राप्त नहीं कर पाए हमारी तरह।
1: बिल्कुल। अगर डॉक्टर पॉल आपसे बात करूं, कोरोना के टाइम की जब कभी याद आती है तो अब भी जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन उस समय जो भारत की रणनीति थी उसको पूरे विश्व में सराहा गया, दो इट वॉज अ मेजर चैलेंज फॉर अस। सो व्हाट मेजर स्टेप्स हैव बीन टेकन टू स्ट्रेंथन इंडियाज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सिंस द COVID-19 पेंडेमिक?
2: उसके बाद में हमने अपनी व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ किया। एक वन हेल्थ मिशन देश में लॉन्च किया गया। उसका तात्पर्य यह है कि जो महामारियां हम अभी देख रहे हैं पिछले दशकों में, और कोविड की महामारी को भी देखा और आगे देखते हैं, तो ये लगता है कि महामारी का जो ओरिजिन है, जो वायरस है, वो एनिमल किंगडम से आता है, बैट से, चमगादड़ से आता है, या बर्ड से आता है, चिकन से आता है। अब इन सब चीजों को समझते हुए क्लियर हो गया है कि हम एनिमल किंगडम से अलग नहीं है, हम वाइल्ड लाइफ के सिस्टम से अलग नहीं है, हम जो हमारा लाइफ स्टॉक है, घरेलू जानवर है, उनसे अलग नहीं है, हम एनवायरनमेंट, जंगल, इन सब से सभी जुड़े हुए। तो वन हेल्थ के अप्रोच के द्वारा इन सब सेक्टर्स को और इन सब डायमेंशंस को जोड़ के एक जो मिशन बनाया गया है, उनके अंतर्गत जो हमारा सर्वेलेंस सिस्टम है कि कहाँ पे क्या बीमारी हो रही है, पशु में भी क्या हो रही है, ह्यूमन में भी क्या हो रही है, उसको जीनोमिक लेवल तक जाके समझना और उसके बारे में देखना कि वो कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, उसको कंटेन कैसे करना है। तो ये एक होल ऑफ गवर्नमेंट का एक सिस्टम वन हेल्थ के अंतर्गत बनाया गया है। हमारे सर्वेलेंस की पद्धतियों को स्ट्रांग किया गया है, हमारे जो इंडस्ट्री है और साइंस एकेडमिया का सिस्टम है उनको अलर्ट करके उनकी अप्रोच करा गया है कि जो वायरसेस महामारी का रूप दे सकते हैं या उनसे मिलते जुलते हैं, उनके लिए अपनी रिसर्च को बढ़ाओ, उनके लिए तैयार रहो कि पहले से ही वैक्सीन की रिसर्च हमारी बहुत आगे तक हो, ताकि अगर मुसीबत आती है तो हम जल्दी से जल्दी 100 दिन के भीतर वैक्सीन को पैदा करने की ताकत रखें। इसके अलावा जो रिस्पांस है ग्राउंड से, जो रिस्पांस है हमारा, जो एक IDSP का सिस्टम है, 2 लाख से भी ज्यादा जगह से हमें इन्फॉर्मेशन आती है, उसको सशक्त किया गया है। सिंड्रोमिक अप्रोच ICMR ने डिटेक्ट करने का सिस्टम को सशक्त किया गया है। वेस्ट वाटर सर्विलेंस भी करा जाए कि सुएज में क्या वायरसेस आ रहे हैं। काफी बड़े तौर पे इन सारे को, पिछले लेसन्स को लेकर और आज की साइंस को जोड़ते हुए हमने अपनी व्यवस्थाओं को बहुत स्ट्रांग किया है। और ये जो फ्यूचर के लिए हमारी बायो सिक्योरिटी है, फ्यूचर के लिए हमारी जो हेल्थ सिक्योरिटी है, उसके लिए ये स्टेप जो है पूरे तरीके से लिए जा रहे हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अगर बात करें कि आम आदमी को क्या चाहिए, अच्छी शिक्षा, आवास मिल जाए और अच्छी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो और किफायती दाम पर जब आपको दवाएं मिलती हैं, तो उससे बड़ी बहुत ही सुखद एहसास नहीं हो सकता एक आम आदमी के लिए। तो जन औषधि केंद्र ऐसे में कितने महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं?
2: जन औषधि केंद्रों के द्वारा हाई क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन जो गुणवत्ता में पूरी उतरती है उनको उपलब्ध किया जाता है। देश में 19,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों का जाल बिछा हुआ है और बहुत तेजी से इसको 25,000 तक लगाने की प्लान है। इसमें

0: हर रोज 10 लाख से ज्यादा व्यक्ति अपनी दवाइयां खरीदते हैं
1: जी,
0: किफायती दाम पे मिलती हैं। मार्केट में जो रेट होता है उससे आधी और कई दवाइयां तो सिर्फ 10% तक भी नीचे उनको उसका प्राइस से मिलता है, बहुत फायदा होता है। अगर हम देखें जब से ये प्रोग्राम चालू हुआ है तो लगभग 40,000 करोड़ रुपए की बचत भारत के नागरिक समाज को इस कार्यक्रम की वजह से उपलब्ध हुई है। और ये कार्यक्रम के द्वारा जो जन औषधि केंद्र हैं ये सब जगह सब प्रदेशों में सब जिलों में इसका डायमेंशन दिखाई देती है, इनकी प्रेजेंस दिखाई देती है। और दवाइयों के अलावा जो मेंस्ट्रुएशन के लिए पैड्स की भी उपलब्धि की गई है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए, और जब से ये वाला कार्यक्रम शुरू हुआ है 105 करोड़ से ज्यादा सुविधा नैपकिन जो है मेंस्ट्रुअल नैपकिन दिए गए जिसकी कीमत सिर्फ 1 रुपया है। तो ये दो काम कर रहा है, एक तो गुणवत्ता की दवाइयां मिल रही हैं, दूसरा व्यक्ति को बचत हो रही है, और तीसरा इसकी वजह से एक्सेस बढ़ती है, व्यक्ति सेवाएं ले पाता है, इस्तेमाल करता है तो बीमारी रुकती है, और उसका जो जायजा है वो हम रुपयों में नहीं ले सकते। इतना बड़े भले का ये कार्यक्रम है।
1: बिल्कुल श्रोताओं, नए भारत की जो स्वास्थ्य क्रांति की यात्रा है केवल नीतियों और आंकड़ों की कहानी नहीं है बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में आए वास्तविक परिवर्तन की गवाही भी है। डॉक्टर पॉल और डॉक्टर अरोड़ा, आप दोनों का धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए।
2: बहुत बहुत शुक्रिया,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वीके पॉल और बिलासपुर एम्स के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी प्रियंका अरोड़ा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: In the special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government transforming healthcare. Participants were Dr. V.K. Paul, former member Niti Aayog, and Dr. N.K. Arora, president, AIIMS Bilaspur. Moderator was Priyanka Arora. This program was produced and presented by the New Services Division of Akashwani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज आपने ट्यून इन किया हुआ है। आज आपके संग है अर्पना और आप सुन रहे हैं गीत मेरे मनमीत। 11:46 और 6 सेकंड हो चुके हैं, तो चलिए गीत मेरे मनमीत की शुरुआत करते हैं अमित कुमार की आवाज के साथ। आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत है और आरटी बर्मन का संगीत है और फिल्म का नाम है आपका अपना, यानी छोटा सा प्यारा सा बहुत खूबसूरत फिल्म बालिका वधू से ये गीत।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से,
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 तक सिर्फ FM गोल्ड पर।
2: वक्त मिला ले 11:51 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मन मीत। अगला गीत जो आपके लिए लेकर आई हूँ वो है, फिल्म का नाम है अनुरोध, किशोर कुमार की आवाज़ होगी, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का होगा। एक बार फिर से ये गीत लिखा हुआ है आनंद बख्शी साहब ने।

खूबसूरत गीतों का ये, मधुर गीतों का ये सिलसिला यूं ही चल रहा है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अगला गीत मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ है और आवाज़ होगी मुकेश साहब की। फिल्म का नाम है धरती कहे पुकार के। इसी गीत के साथ अर्पना को दें इजाजत। गीत के बाद एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुदेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया

0: उन्हें पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास, आपदा प्रबंधन, जलवायु अनुकूल शासन और वैज्ञानिक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 5 प्रमुख रणनीतिक पहलों की रूपरेखा प्रस्तुत की। इनमें उच्च रिजोल्यूशन, ग्राम संसाधन मानचित्रण, आर्द्र भूमि, वन, नदियों और भूदृश्यों की नियमित निगरानी, पूर्वोत्तर में भूस्थानिक और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप्स को बढ़ावा, सभी प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म NER शील्ड का विकास तथा प्राकृतिक संसाधनों के आकलन के लिए विशेष ढांचा तैयार करना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल की पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉ. अलका गुर्जर और डॉ. सतीश पुनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉ. सुभाष सी कश्यप के निधन पर शोक व्यक्त किया। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ. कश्यप ने अपने शोध, लेखन और जनसेवा के माध्यम से भारत के संविधान और संसदीय लोकतंत्र की समझ में अमूल्य योगदान दिया। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में आज भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के रॉन ताई और कैंग खाईचिंग को शिकस्त दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। Prime Minister Narendra Modi yesterday held talks with acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. The two leaders reviewed the full spectrum of bilateral relations and explored new avenues of cooperation in energy, trade, investment, healthcare, and automobiles, among others. In a social media post, Mr. Modi said they had extensive discussions on expanding cooperation in energy, critical minerals, technology, agriculture, health and people-to-people ties. He said that as a valued partner in Latin America, India's close cooperation with Venezuela holds immense importance for the Global South. He said both nations will continue to work together for the mutual benefit of the people of the two countries. Addressing media after the talks, Secretary East Rudrendra Tandon said Venezuela possesses one of the largest oil reserves in the world. He said today's discussions between the two sides focused on forging an energy partnership between the two countries as Venezuelan energy sector is undergoing a fundamental transformation. UK Foreign Secretary Yvette Cooper yesterday called on Prime Minister Narendra Modi in New Delhi. In a social media post, the Prime Minister said that he appreciated the deepening of the India-UK partnership in recent times that has unlocked unprecedented growth opportunities for both the countries. Mr. Modi said that India-UK Vision 2035 will continue to guide the partnership and strengthen their joint efforts for global good. Prime Minister Narendra Modi has condoled the passing of former Secretary General of the Lok Sabha, Dr. Subhash C. Kashyap. In a social media post, Mr. Modi said that Dr. Kashyap was one of the India's foremost constitutional scholars whose contributions to parliamentary and constitutional discourse enriched the society. The Prime Minister further added that his writings and commitment to strengthening democratic institutions were noteworthy. A delegation of the United States Trade Representatives, USTR, led by the chief negotiator, yesterday concluded its fourth day visit India.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आज की रात मैं हूँ आपके साथ माधुरी, कार्यक्रम निशिकंथा लेकर। नमस्कार। अच्छा, हम जब भी निशिकंथा की बात करते हैं तो बात ये होती है कि यहाँ पर जिंदगी की हर धड़कन सुनाई देती है, और हमने इसी प्लेटफॉर्म से अपनी बहुत सारी बातें की हैं, अपने जज्बातों का इजहार किया है, मोहब्बत की बातें की हैं, ख़तों की बातें की हैं, न जाने कितनी कितनी बातें की हैं। पर आज जो बात करेंगे वो अपनी तो है ही, साथ ही साथ हम सब की भी है। बात है हमारे आसपास की, बात हमारे पर्यावरण की। तो बात को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, बस आपका साथ चाहिए। निशिकंथा के बहाने करेंगे बहुत सारी बातें।

ये जिस चित्रकार ने हमें सुंदर सी खिली खिली हर मौसम से लबरेज ये धरती दी है, तो वहाँ हमारा भी कुछ फर्ज है कि हम इस धरती को ऐसा ही सुंदर बनाए रखें। प्रकृति जो है, ये हमारी प्रकृति माँ की गोद में हम सब कितने अच्छे से जी रहे हैं, फल फूल रहे हैं। वो हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन देती है, पानी देती है, फल फूल देती है, लेकिन कभी सोचते हैं कि हम क्या दे रहे हैं? बस लालच, प्रदूषण और बेरुखी। आज जब जंगलों की कटाई हो रही है, नदियां विषैली हो रही हैं, आकाश धुंधला हो रहा है, तब भी हम सोचते हैं कि केवल पेड़ लगाने भर से पर्यावरण बच जाएगा। पर सच्चाई ये नहीं है दोस्तों। बिना एक पौधा लगाए भी हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित धरती को छोड़ सकते हैं, और इसी के साथ हम सबकी जिंदगी फूलों की तरह खिली खिली रहेगी। बस एक बार हमें ध्यान से सोचने की ज़रूरत है और कुछ छोटी छोटी चीज़ें कर गुजरने की ज़रूरत है।

पता है आपको कि हमारे एक एक हम सब जो एक एक हैं और हमारे एक छोटे छोटे प्रयासों से, या कहें कि जो हमारे ख़राब, जो छोटे छोटे ख़राब ख़राब सी आदतें हैं उन्हें सुधार कर बस हम आगे बढ़ें तो बहुत कुछ हो सकता है। जब लाखों दिल एक साथ धड़कते हैं ना तो तूफान बन जाता है। और इसी तरह से हम सबको छोटे छोटे से प्रयास करने हैं। हर दिन जो हम प्लास्टिक की बोतल, थैली और पैकेट इधर उधर फेंकते रहते हैं ना, उसका प्रबंधन करना है। सदियों ये जो चीज़ें हैं जो इधर उधर हम प्लास्टिक की फेंक देते हैं, ये सदियों तक धरती को जहर देते रहते हैं। और क्या हम चाहेंगे कि हमारी धरती जहरीली हो जाए? बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए हमें बस थोड़े थोड़े से प्रयास करने हैं। गीला, सूखा और प्लास्टिक जैसे कूड़ों को अलग अलग करके फेंकना है, और जो प्लास्टिक है उसे तो रिसाइकलिंग जो केंद्र हैं वहाँ तक पहुँचाना है। हमारे इन्हीं छोटे छोटे प्रयासों से लाखों टन प्रदूषण कम कर सकते हैं हम। यकीन नहीं हो रहा ना, लेकिन ये सच है। और जो हमारे भाई बहन जो हम गर्मियों में जाते हैं पहाड़ों पर घूमने, वहाँ पर भी हम चिप्स के पैकेट फेंक देते हैं, पानी की बॉटल छोटी छोटी इधर उधर गिरा देते हैं, फेंक देते हैं, तो ये सब हमारी धरती में ही तो जज्ब हो रहा है, कहाँ जा रहा है। तो ये सब हमें नहीं करना है, वरना हम कहाँ जाएंगे नीले पर्वतों की धारा देखने, हम कहाँ घूमने जाएंगे? तो थोड़ा तो सोचना बनता है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और समय हो गया है रात के 12:29 और 10 सेकेंड। ये कार्यक्रम है निशिगंधा और आज की रात मैं माधुरी हूँ आप सभी के साथ। देखिए ना, हम इस जगह से अपनी बात करते हैं, अपने घर के, अपने परिवार के, हर चीज़ की बात करते हैं, बहुत सारे जज्बातों को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, उन पर चर्चा करते हैं। और आज जो है, यहीं से मैंने सोचा सोने से पहले एक ऐसी बात हम सबको मंथन करनी चाहिए कि जब हम घर से बाहर पैर निकालते हैं तो वो जो जगह है वो भी तो हमारी है, ये दुनिया हमारी है, देश हमारा, ये शहर हमारा, ये मोहल्ला हमारा है, तो सोचेंगे भी तो हम ही ना कि घर तो साफ कर लिया लेकिन उसके बाहर क्या, उसके बाहर भी हम ही हैं और हमें ही सब करना है। एक एक कड़ी मिलके हम ये सारे काम करते जाएंगे तो देखिएगा घर से बाहर भी सब कुछ सुंदर, अच्छा, स्वच्छ होगा और हमारा पर्यावरण खुश होगा। और ये जो पर्यावरण में नए नए रंग बिखरे हुए हैं ना, इनसे हम अपनी एक नई कहानी लिखेंगे।
1: I reached a point where I said stardom is now very big. Stardom has to finish somewhere.

कराया जग से किनारा, तो हमें इन बातों से किनारा बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन हाँ, किनारे पे जो बैठकर, यानी कि समंदर के किनारे जो बैठकर, नदियों के किनारे बैठकर कितने ही लोग जो हैं खाते हैं, पीते हैं और फिर वो कचरा वहीं फेंक आते हैं, इस बात से किनारा करना है कि हमें ये नहीं करना है। आपकी एक छोटी सी आदत समुद्र के किनारे को प्लास्टिक से मुक्त करा सकती है। देखिए, ये बहुत ही भावुक क्षण है जब हम ये देखते हैं कि समुद्री जीव प्लास्टिक खाकर मर रहे हैं। क्या हम इतने निर्दयी हो गए हैं? पानी और बिजली की बचत भी जो है वो पर्यावरण संरक्षण ही है। तो छोटी छोटी सी बातें हैं, नहाते समय नल बंद रखिए, टपकते नल को तुरंत ठीक करवा लीजिए, बिजली के बल्ब को LED में बदल लीजिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनसे लाखों लीटर पानी बच सकता है, बिजली बच सकती है। और पता है, हमारे देश में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ छोटे छोटे बच्चे बहुत ही दूर से पानी लेके आते हैं, महिलाएं बहुत दूर से पानी लेके आती हैं। देखिए, पानी का तो कोई रंग नहीं होता, लेकिन हम सबके रंग अलग अलग हैं। कुछ लोग हैं जो पर्यावरण संरक्षण के कामों में लगे हुए हैं, अपने छोटे छोटे प्रयासों से कुछ ना कुछ कर गुजर रहे हैं, और कुछ लोगों ने अपने बहुत ही खराब खराब रंग दिखाए हैं। तो ये हम में है, ये हमें सोचना है कि हमें कैसा इंसान बनना है, पानी का रंग कैसा होना चाहिए, ये हमें तय करना है।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये सफ़र है निशे कंधाकार, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम छोटे छोटे प्रयासों के ज़रिए अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। और ये ख़ास तौर पर रात के कार्यक्रम में इसीलिए लेकर आए कि जब हम सोएं तो एक बार

अपनी प्रकृति के बारे में सोचें, एक बार उस आबो हवा के बारे में सोचें जिसमें हम सांस लेते हैं, और सोच कर देखें कि हमें हमारी ज़ात के अलावा भी इस प्रकृति को देने के लिए कुछ है और हमें वो देना चाहिए।

0: जी हाँ, जब बोलने पे आते हैं तो पर्वत भी बोलने लगते हैं। और बात तो ये है कि हमने ना अपनी ज़रूरतें कुछ ज़्यादा ही बढ़ा ली हैं। हमें उपभोग से ज़्यादा खरीदने की आदत हो गई है, ज़रूरत से ज़्यादा सामान इकट्ठा करने लगे हैं, तो थोड़ी सी रिफ्यूज़ करने की भी आदत डालें कि नहीं, अब बस ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ नहीं चाहिए। बहुत सारा सामान जो ज़रूरत का भी नहीं है, हम बाज़ार से वो भी ख़रीद लाते हैं। पुरानी चीज़ों को नए कपड़े, पुरानी चीज़ों को जो है उन्हें भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। कुछ दिन हो गए, चलो अब नया कुछ ले लेते हैं। तो घर में पुरानी चीज़ भी पड़ी होती है, नई चीज़ भी आ जाती है, और घर में भी उन चीज़ों को रखने की जगह कम पड़ जाती है। तो पुराने को निकालते निकालते भी बहुत सारा कूड़ा होता है। और आप देखेंगे, अगर आप आज से भी अपने घर में देखना शुरू कर दें, तो आपको लगेगा कि बहुत सारा सामान ऐसा है जिसकी आपको ज़रूरत थी लेकिन कभी पड़ी नहीं, हम ले आए और हमने घर में रख ली चीज़ें। तो और जो बिना ज़रूरत का सामान है वो हम दूसरों में बांट भी सकते हैं। किताबें, खिलौने, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके शायद आज आपको ज़रूरत नहीं है, आप उन्हें दूसरों में बांट दें। परिवार, मित्रों और पड़ोसियों से भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को अपनाने के लिए बताएं। हम एक किताब से पहले जो है दो तीन मतलब साल निकाल देते थे। हमने पुरानी किताब खरीदी, उसे पढ़ा, फिर हमसे किसी ने खरीद लिया आधे रेट में, ऐसे भी हुआ था। आप देखेंगे कि पहले ऐसा होता था, लेकिन आज हर सेमेस्टर में आपको नई किताब चाहिए। हर क्लास में जब नया बच्चा जाता है नई क्लास में, तो हम उसे पूरा नया सेट ला के देते हैं। तो हमने भी जो है ना अपनी ज़रूरतें यूं ही बढ़ा ली हैं। शायद उसकी उतनी ज़रूरत है नहीं, लेकिन हमने उसे तरजीह देना शुरू कर दिया है। तो छोटी छोटी सी आदतें अगर हम बदलेंगे, तो ज़रूर हमारा पर्यावरण भी बदलेगा, और हम प्रकृति से नज़रें मिलाने के काबिल हो जाएंगे। ये जो अगला गीत मैं चला रही हूँ, ये थोड़ा सा जज्बाती है, जज्बातों की तरफ ले जाके हमें कुछ सिखा रहा है, लेकिन हाँ, सिखा तो रहा है।
1: कैसे जीते हैं भला

देखिए ना, प्रकृति हमसे बदला तो नहीं लेती है, वो सिर्फ चुपचाप सहती रहती है, लेकिन उसकी चुप्पी अब चीख बन रही है, बाढ़, सूखा, ग्लोबल वार्मिंग के रूप में। हमें अब जागना होगा। बिना पेड़ लगाए भी हम अपने व्यवहार, आदतों और सोच को बदल कर एक हरा भरा भविष्य बना सकते हैं, और हम ज़रूर बनाएंगे। आज की रात सोचेगा ज़रूर। और जाते जाते ये गीत आप सभी के लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल शिलांग में उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र NESAC की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास, आपदा प्रबंधन, जलवायु अनुकूल शासन और वैज्ञानिक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 5 प्रमुख रणनीतिक पहलों की रूपरेखा प्रस्तुत की। इनमें उच्च रिजोल्यूशन, ग्राम संसाधन मानचित्रण, आर्द्र भूमि, वन, नदियों और भू दृश्यों की नियमित निगरानी, पूर्वोत्तर में भू स्थानिक और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप्स को बढ़ावा, सभी प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म NER शील्ड का विकास तथा प्राकृतिक संसाधनों के आकलन के लिए विशेष ढांचा तैयार करना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार

0: तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर और डॉक्टर सतीश पुनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए 7 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा और मंसूर अली खान को कर्नाटक से उम्मीदवार बनाया गया है। मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन, राजस्थान से नीरज डांगी और झारखंड से प्रणव झा को पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारा है। इसके अलावा तमिलनाडु से होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए प्रवीण चक्रवर्ती को कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया गया है। उपराष्ट्रपति सीबी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष सी कश्यप के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर कश्यप ने अपने शोध, लेखन और जनसेवा के माध्यम से भारत के संविधान और संसदीय लोकतंत्र की समझ में अमूल्य योगदान दिया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर कश्यप देश के अग्रणी संवैधानिक विद्वानों में से एक थे, जिनके संसदीय और संवैधानिक विमर्श से जुड़े योगदानों ने समाज को समृद्ध किया। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाइकिन को शिकस्त दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अजय कुमार। Prime Minister Narendra Modi yesterday held talks with acting President of Venezuela Delcy Rodriguez in New Delhi. The two leaders reviewed the full spectrum of bilateral relations and explored new avenues of cooperation in energy, trade, investment, healthcare and automobiles, among others. In a social media post, Mr. Modi said they had extensive discussions on expanding cooperation in energy, critical minerals, technology, agriculture, health and people-to-people ties. He said that as a valued partner in Latin America, India's close cooperation with Venezuela holds immense importance for the Global South. He said both nations will continue to work together for the mutual benefit of the people of the two countries. Addressing media after the talk, Secretary East Rudrendra Tandon said Venezuela possesses one of the largest oil reserves in the world. He said today's discussions between the two sides focused on forging an energy partnership between the two countries as Venezuelan energy sector is undergoing a fundamental transformation. Union Minister for Ministry of Development of Northeastern Region Jyotiraditya M. Sindhya yesterday attended the meeting of the Northeastern Space Application Centre, NESAC, in Shillong. The Union Minister outlined 5 strategic initiatives to position NESAC as a transformative institution for regional development, disaster preparedness, climate-smart governance, scientific innovation and data-driven policy-making. These include high-resolution village resource mapping, regular monitoring of wetlands, forests, rivers and landscapes, promotion of geospatial and space technology startups in the Northeast, development of an all-hazard disaster resilience digital twin platform, NER Shield, and creation of a Northeast Green Wealth and Natural Capital Accounting Framework. Prime Minister Narendra Modi has condoled the passing of former Secretary General of the Lok Sabha, Dr. Subhash C. Kashyap. In a social media post, Mr. Modi said that Dr. Kashyap was one of the India's foremost constitutional scholars whose contributions to parliamentary and constitutional discourse enriched the society. The Prime Minister further added that his writings and commitment to strengthening democratic institutions were noteworthy. A delegation of the United States Trade Representative, USTR, led by the chief negotiator, yesterday concluded its four-day visit to India to advance discussions on the trade agreement. Ministry of Commerce and Industry said that during the visit, the teams held constructive and positive discussions across a wide range of issues covering trade in goods, non-tariff measures, customs and trade facilitation, economic security alignment, and other areas of mutual interest. India and the United States agreed on a framework for an interim agreement regarding reciprocal and mutually beneficial trade in a joint statement issued on the 7th of February. India and Zimbabwe yesterday reaffirmed commitment to deepen bilateral defence cooperation during the inaugural meeting of India-Zimbabwe Joint Defence Committee held in New Delhi.

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और मैं हूं आपके साथ माधुरी। नमस्कार। और रात के इस वक्त हम लेकर आते हैं एक ख़ास पेशकश जिसका नाम है गीत सुहाने, और इसमें हम आपको सुनवाते हैं ओल्ड क्लासिक्स।

जी हाँ, चंपी से क्या घबराना, और चंपी तो सर को हल्का ही करती है। और ये जो गीत है ये बहुत ही प्यारा गीत, और ये गीत हम आपके लिए लेकर आए थे फिल्म प्यासा से मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में। अगला गीत आप तक पहुंच रहा है फिल्म सीआईडी से शमशाद बेगम के आवाज़ में।

भी गाइए ना। दिल की उमंगे हैं जवान, गाइए ना, क्या मुश्किल है, सरगम बताऊं।

वाह क्या बात है, मस्ती भी मौसीकी भी। और जो अगला गीत आप तक हम पहुंचा रहे हैं वो है फिल्म मधुमती का गीत लता जी की आवाज में।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये सफर है गीत सुहाने का और समय हो रहा है इस वक्त रात के 1:26 और पूरे 15 सेकेंड।

ये जो गीत सुना आपने, ये गीत था फिल्म कौन सी फिल्म से है ये गीत? ये गीत है फिल्म हावड़ा ब्रिज से, और इसे गाया आशा जी ने। माफ़ कीजिएगा, मैं भी गुम हो गई इस गीत में। और अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए, फिल्म 16 साल से, हेमंत कुमार की आवाज़ का ये गीत है, एसडी बर्मन के संगीत से सजा हुआ।

वाह वाह, हेमंत कुमार जी की आवाज़ का जवाब नहीं। और आपने एक चीज़ नोट की, जी हाँ, माउथ ऑर्गन जो बज रहा था कितना प्यारा बज रहा था और पूरे गाने में था। और कुछ आपने नोट किया? ज़रूर करिएगा। हर गाने में, जो पुराने गाने हैं, इसमें इंस्ट्रूमेंट्स का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल है और तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं। आज तो संगीत बनाने का जो रिवाज है वो कुछ और ही हो गया है, लेकिन इनमें आपको अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सुनाई देंगे और वो एकदम से कानों को लगते हैं कि अरे ये तो ये चीज़ बज रही है, ये चीज़ बज रही है। चलिए अगले गाने की तरफ पहुंचते हैं और ये अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए, फिल्म चलती का नाम गाड़ी से, आशा जी की आवाज़ में।

ये गाना सुन रहे थे आप फिल्म आर पार से, जो आई थी 1954 में। गीता दत्त की आवाज़ में ये गीत सुना आपने, ओपी नैयर के संगीत के साथ। अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए फिल्म दिल्ली का ठग से।

आप सभी जुड़े हुए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये सफ़र है गीत सुहाने का, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं ओल्ड मेलोडीज़। और सच में एक से बढ़कर एक इतने प्यारे प्यारे से गाने हैं जो मन को लुभा रहे हैं। अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए फिल्म नया दौर से, आशा जी और शमशाद बेगम के आवाज़ में, संगीत ओपी नैयर साहब का।

ये प्यारा सा गीत सुना आपने फिल्म लीडर से मोहम्मद रफ़ी और लता जी की आवाज़ में और संगीत दिया नौशाद जी ने। और अगला गीत है फिल्म कन्हैया से मुकेश कुमार की आवाज़ में।

0: रुक जाओ जाने वाली रुक जा, मैं तो राही तेरी मन।
1: भाई वक्त कह रहा है कि गीत सुहाने को हम यहीं विराम दें, बिल्कुल रुक नहीं सकते और अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।
2: आज की ताज़ा,
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमरीका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
4: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
3: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल शिलांग में उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र NESSC की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास, आपदा प्रबंधन, जलवायु अनुकूल शासन और वैज्ञानिक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 5 प्रमुख रणनीतिक पहलों की रूपरेखा प्रस्तुत की। इनमें उच्च रिजोल्यूशन, ग्राम संसाधन मानचित्रण, आर्द्र भूमि, वन, नदियों और भू दृश्यों की नियमित निगरानी, पूर्वोत्तर में भूस्थानिक और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप्स को बढ़ावा, सभी प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म NER शीड का विकास तथा प्राकृतिक संसाधनों के आकलन के लिए विशेष ढांचा तैयार करना शामिल है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉ. अलका गुर्जर और डॉ. सतीश पुनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए 7 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा और मंसूर अली खान को कर्नाटक से उम्मीदवार बनाया गया है। मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन

भारत की यात्रा पर रहेंगे। उनकी ये यात्रा विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री खनाल नई दिल्ली में डॉ जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी, ऊर्जा और लोगों के बीच संपर्क जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। ये दौरा नेपाल और भारत के बीच स्थायी और बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर रात सुरमई लेकर माधुरी है आप सभी के साथ। नमस्कार। मोहब्बत का कोई सदमा उठाना चाहिए था, भुलाया था जिसे वो याद आना चाहिए था, और मेरी आरजू और उसकी आरजू में फ़र्क ये था, मुझे बस वो उसे सारा जमाना चाहिए था।

याद आना उसका महंगा पड़ गया, रंग तन्हाई का फीका पड़ गया। हर तरफ यादें ही थीं उस शहर में, मैं वहां जाकर अकेला पड़ गया।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से,
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड पर।

आपने ट्यून किया आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और ये सफ़र है रात सुरमई का, और रात सुरमई में होती हैं दिल की बातें आपसे। नाउमीदी मौत से कहती है अपना काम कर, आस कहती है ठहर, खत का जवाब आने को है। और जगजीत सिंह की आवाज़ में ये जो गज़ल आप तक पहुंच रही है, जिसमें वो कहते हैं कि तेरे खुशबू में बसे ख़त मैं जलाऊं कैसे, यानी ख़तों की जो अहमियत है, ख़तों में जो बात है, जो प्यार का ख़जाना छुपा है, उसे अपने से दूर कैसे करूं, यार दूर हो भी जाए पर ये जवाब, ये ख़त व ख़तूत का ये मामला अपने से दूर कैसे किया जाए।

देर तक देखा किए, फिर सो गए। चांद दरिया पेड़ गड्ढमड्ढ हो गए। तारों ने सब बसेरा कर लिया, पेड़ के अरमां पूरे हो गए। चार छह सिक्के थे, खोटे ही सही, देखिए किस्मत की वो भी खो गए।

बस जान गया मैं तेरी पहचान यही है, बस जान गया मैं तेरी पहचान यही है, तू दिल में तो आता है समझ में नहीं आता।

और अब जाते जाते ये भी सुनिए कि जाने वाले से मुलाकात न होने पाई, दिल की दिल में ही रही बात न होने पाई, तो फिर क्या हो, फिर मिलने का वादा हो, यही बात होगी। और ये रात सुरमई का आखिरी नगमा आप सभी के लिए। इसी के साथ दीजिएगा इजाज़त माधुरी को।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: The discussions also.
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: Can enter the Venezuelan market successfully.
0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानाल 5 से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। उनकी ये यात्रा विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान श्री खानाल नई दिल्ली में डॉ जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। ये दौरा नेपाल और भारत के बीच स्थायी और बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगा। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के मुख्य वार्ताकार के नेतृत्व में आया अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भारत की 4 दिन की यात्रा संपन्न कर कल स्वदेश लौट गया। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच वस्तुओं के व्यापार, गैर शुल्कीय बाधाओं, सीमा शुल्क तथा व्यापार सुगमता, आर्थिक सुरक्षा समन्वय और अन्य साझा हितों से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। भारत और अमेरिका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में पारस्परिक और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1 वर्ष का सेवा विस्तार देने की मंजूरी दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल इस महीने की 10 तारीख से प्रभावी होगा और ये 1 और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है रात्रि के 3:10, माफ कीजिएगा 3:11, और हमेशा की तरह आप सुनते हैं रोज अपना पसंदीदा कार्यक्रम हमराही। कार्यक्रम के साथ मैं अर्चना गोयल। नमस्कार दोस्तों, दिन भर की भागदौड़, जिम्मेदारियों और थकान के बाद अब समय है कुछ पल खुद के साथ बिताने का। रात का ये सुहाना सफ़र लेकर आया है कुछ खूबसूरत बातें, कुछ अनमोल एहसास और कुछ यादें और कुछ ऐसे जज्बात जो अक्सर दिन के उजाले में हमसे छूट जाते हैं। तो आइए, दिल के दरवाजे खोलिए, भावनाओं को बहने दीजिए और इस खुशनुमा रात का आनंद लीजिए।

0: मानो कहा अब तुम हो जवां मेरी जान धड़क पन्ने छोड़ो।
1: आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में ये गीत था फिल्म तीन देवियाँ से। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि ये रात सिर्फ अंधेरा नहीं लाती, ये अपने साथ सुकून भी लाती है। दिन में हम दुनिया की आवाज़ें सुनते हैं, लेकिन रात में अपने दिल की आवाज़ सुन पाते हैं। रात की खामोशी में घड़ी की टिक टिक भी कहानी सुनाती है, हवा की हल्की सरसराहट भी किसी अपने का संदेश लाती है। कई बार हम दिन भर मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन रात होते ही कुछ यादें चुपके से आकर बैठ जाती हैं, जिनको रोक पाना मुश्किल होता है। कहती भी है कि रात चुप थी मगर दिल में शोर बहुत था, जिसे भूलना चाहा उसी का जिक्र बहुत था।

मेरी सनम फिल्म में ये आवाज़ें थीं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की। यादें भी बड़ी अजीब होती हैं, कुछ यादें मुस्कुराहट बन जाती हैं, कुछ आँखों में नमी छोड़ जाती हैं। कभी स्कूल के दोस्त याद आते हैं तो कभी बचपन की गर्मियों की छुट्टियाँ, कभी माँ की आवाज़ तो कभी किसी खास का साथ। यादें कभी पुरानी नहीं होती, बस वक्त के साथ और कीमती हो जाती हैं। वक्त गुजर जाता है लेकिन कुछ लोग नहीं जाते, दिल के किसी कोने में हमेशा बसे रह जाते हैं।

यह आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और नंदा की, फिल्म का नाम था जब जब फूल खिले। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही और मैं हूं आज आपके साथ अर्चना गोयल। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 3:30 और ठीक 43 सेकेंड।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत रिश्ते होते हैं। घर बड़ा हो या छोटा, अगर उसमें अपनापन है तो वही सबसे खूबसूरत जगह है। एक फोन कॉल, एक हालचाल और एक सच्ची मुस्कुराहट, कई बार इतना ही काफी होता है किसी का दिन बेहतर बनाने के लिए। आज अगर कोई अपना याद कर रहा है तो उसे ज़रूर बात कीजिए, हो सकता है वो भी आपकी आवाज़ सुनने का इंतज़ार कर रहा हो।

हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ बातें अधूरी रह जाती हैं, कुछ सपने, कुछ मुलाकातें, कुछ शिकायतें, लेकिन शायद ज़िंदगी का नाम ही अधूरापन है। अगर सब कुछ सबको मिल जाए तो तलाश ख़त्म हो जाएगी, और जब तलाश ख़त्म हो जाएगी तो ज़िंदगी भी उतनी दिलचस्प नहीं रह जाएगी। कहते भी हैं कि कुछ ख्वाहिशें अधूरी रहें तो अच्छा है, ज़िंदगी को आगे बढ़ने का बहाना मिलता है।

दोस्तों, रात का समय खुद से मिलने का सबसे अच्छा समय है। पूछिए खुद से, आज मैंने क्या सीखा? किसी को खुश किया? किसी का दिल तो नहीं दुखाया? अगर जवाब अच्छे हैं तो मुस्कुराइए। अगर कहीं गलती हुई है तो कल उसे सुधारने का संकल्प लीजिए, क्योंकि हर सुबह नया मौका देती है।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में ये गीत था फिल्म सावन की घटा से। दोस्ती वो रिश्ता है जो खून से नहीं दिल से बनता है। सच्चा दोस्त वो होता है जो आपके अच्छे दिनों में तालियां बजाए और बुरे दिनों में आपका हाथ थाम ले। ऐसे दोस्तों को कभी मत खोइए, क्योंकि ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत यादों में दोस्ती का रंग ज़रूर होता है।

जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भले ही साथ ना हो लेकिन दिल से कभी दूर नहीं जाते। उनकी बातें, उनकी हंसी, उनका साथ, सब कुछ यादों में जीवित रहता है। रात अक्सर उन्हीं लोगों की याद लेकर आती है। चांद को देखा तो तेरी याद चली आई, रात महकी और तन्हाई मुस्कुराई।

दोस्तों, उम्मीद है कि आज की रात के इस सफर में आपको अपने दिल के करीब कुछ पल मिले होंगे। जाते जाते बस इतना कहना चाहूंगी, जो बीत गया उसे याद रखिए, जो मिला है उसका सम्मान कीजिए और जो आने वाला है उसका स्वागत कीजिए। मैं आपकी हमराही अर्चना गोयल अब आपसे अनुमति चाहूंगी। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल की पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानाल आज से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। उनकी ये यात्रा विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान श्री खानाल नई दिल्ली में डॉ जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। ये दौरा नेपाल और भारत के बीच स्थायी और बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगा। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार देने की मंजूरी दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल इस महीने की 10 तारीख से प्रभावी होगा और ये एक और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरल उपाय अपना सकता है। आज पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। ये हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1973 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित रखने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। ये दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून कल केरलम पहुंच गया है। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुदुचेरी और कराईकाल में भी आज तेज बारिश होने की संभावना है। बिहार, महाराष्ट्र

नई सुबह की पहली आहट के साथ आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम अरुणिमा में। मैं आपकी हमसफर अर्चना गोयल अगले 50 मिनट तक हम साथ बिताएंगे कुछ ऐसे पल जो मन को शांति देंगे, विचारों को पॉजिटिव दिशा देंगे और जीवन में नई ऊर्जा भर देंगे। इस समय घड़ी में सुबह के 4:11 हुए हैं। बाहर अभी अंधेरा है, लेकिन प्रकृति के भीतर एक नई सुबह जन्म लेने की तैयारी कर रही है। पक्षियों की चहचहाहट अभी शुरू नहीं हुई, सड़कों पर सन्नाटा है और वातावरण में एक अद्भुत शांति फैली हुई है। यही वो समय है जब हम अपने मन की आवाज़ सबसे स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं, और ये आवाज़ अगर प्रार्थना के रूप में हो तो क्या बात है।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत था फिल्म शागिर्द से। दोस्तों, हर सुबह हमें एक नया अवसर देती है। कल चाहे जैसा भी रहा हो, आज का दिन हमारे हाथ में है। एक छोटी सी बात याद रखिए, सूरज हर दिन ये संदेश लेकर आता है कि अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। जीवन में समस्याएं सभी के पास होती हैं, लेकिन सफल वही होता है जो समस्याओं के बीच भी संभावनाएं ढूंढ लेता है।

सुबह का ये समय आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है। इस समय मन शांत रहता है और विचारों में स्पष्टता आती है। आज का विचार है कि दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ दीजिए, स्वयं को बेहतर बनाने की शुरुआत कीजिए। जब हम अपने भीतर परिवर्तन लाते हैं तो दुनिया अपने आप बदलती हुई दिखाई देने लगती है।

0: आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा, और मैं हूं आज आपके साथ अर्चना गोयल। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 4:28 और ठीक 43 सेकेंड।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: अक्सर हम अपनी खुशियों को भविष्य के किसी दिन के लिए टाल देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि यात्रा का हिस्सा है।

एक बार एक व्यक्ति गुरु के पास गया और बोला, मेरे जीवन में बहुत परेशानियां हैं। गुरु उसे एक तालाब के पास ले गए और एक मुट्ठी नमक पानी में डाल दिया। फिर बोले, इस पानी को पीकर देखो। व्यक्ति ने कहा, पानी कड़वा हो गया। गुरु फिर उसे एक बड़ी झील के पास ले गए और उतना ही नमक उसमें डाल दिया। जब व्यक्ति ने झील का पानी पिया तो वह सामान्य था। गुरु मुस्कुराए और बोले, दुख नमक की तरह है, उसकी मात्रा नहीं बदलती। फर्क सिर्फ इतना है कि आपका मन तालाब जितना छोटा है या झील जितना विशाल। इसलिए अपने मन को बड़ा बनाइए, समस्याएं छोटी लगने लगेंगी।

दोस्तों, जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब कुछ लोग जागकर अपने सपनों को आकार दे रहे होते हैं और कुछ लोग ईश्वर का स्मरण कर रहे होते हैं। विश्वास जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब रास्ता दिखाई ना दे तब विश्वास वो दीपक है जो आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। आज सुबह ईश्वर को धन्यवाद कहिए। धन्यवाद उस जीवन के लिए जो मिला, उन लोगों के लिए जो आपके साथ है और उन चुनौतियों के लिए जिन्होंने आपको मजबूत बनाया।

हम अक्सर बड़ी खुशियों के पीछे भागते हैं और छोटी खुशियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन सोचिए, सुबह की ठंडी हवा, चाय की पहली चुस्की, माता पिता का आशीर्वाद, बच्चों की मुस्कान, ये कितनी बड़ी नेमतें हैं। आज का संकल्प, मैं हर दिन कम से कम ऐसी बात के लिए आभार व्यक्त करूंगा जो मेरे जीवन को सुंदर बनाती है।

दोस्तों, याद रहना, हारने वाले भी वही रास्ते देखते हैं जो जीतने वाले देखते हैं। फर्क सिर्फ नज़रिए का होता है। अगर आपको कोई काम कठिन लग रहा है तो खुद से कहिए कि मैं कोशिश करूँगा या मैं कोशिश करूँगी। यही कोशिश धीरे धीरे सफलता में बदल जाती है।

और अब धीरे धीरे पूर्व दिशा में उजाला फैलने को तैयार है। नई सुबह आपका इंतजार कर रही है। जाने से पहले एक विचार, हर सुबह जीवन हमें दो विकल्प देता है, सपनों के साथ सोती रहिए या उठकर उन्हें पूरा करने की कोशिश कीजिए। इसी प्रेरणा के साथ मैं अर्चना गोयल आपसे अनुमति चाहती हूँ। नमस्कार।

ये था कार्यक्रम अरुणिमा। 5:10 पर आपसे फिर मुलाकात होगी कार्यक्रम भोर सुहानी में। और अब वक्त है समाचारों का, आइए सुनते हैं समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने

0: भारत और वेनेजुएला संबंधों पर चर्चा की। इसके साथ ही ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार देने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल 10 जून से प्रभावी होगा और ये एक और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। नेपाल की विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। उनकी ये यात्रा विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉ. जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। ये दौरान नेपाल और भारत के बीच स्थायी और बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगा। सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस केरल द्वारा किए गए एक पोस्ट का खंडन किया है। इस पोस्ट में राजेश एक्सपोर्ट्स के चालू वित्त वर्ष के आंकड़ों की तुलना भारत के वित्त वर्ष 2026 के आईटी निर्यात डेटा से की गई थी। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा फर्जी है। पत्र सूचना कार्यालय ने लोगों को सलाह दी है कि किसी भी जानकारी या दावे को साझा करने या उस पर भरोसा करने से पहले विश्वसनीय आधिकारिक स्रोतों से उसकी जांच अवश्य करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता के लिए भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल की पहचान दिलाएगा और युवाओं के लिए बड़े अवसर उपलब्ध कराएगा। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। ये हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1973 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत की गई थी। इस दिन का उद्देश्य पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित रखने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। ये दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाइजिंग को शिकस्त दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Ajay Kumar. Prime Minister Narendra Modi yesterday held talks with Acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. The two leaders reviewed the full spectrum of bilateral relations and explored new avenues.

मधुर सुहाने, एक ऐसा कार्यक्रम जो सुबह की ताजगी, प्रकृति की सुंदरता और सकारात्मक विचारों के साथ आपके दिन की शुरुआत को और भी खूबसूरत बनाता है। कार्यक्रम के साथ मैं अर्चना गोयल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगा हर्ट्ज पर। तो आइए आज की इस सुहानी भोर में आपके साथ कुछ पल बिताते हैं और अपने मन को नई ऊर्जा से भरते हैं।

दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि पेड़ कभी शिकायत नहीं करते? वे हर मौसम को स्वीकार करते हैं, गर्मी, सर्दी या बरसात। वे अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं। जीवन भी कुछ ऐसा ही है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने मूल्यों और विश्वास से जुड़ा रहता है, वो हर परिस्थिति को संभाल लेता है।